0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी इंदौर है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि तदनुसार 9 जुलाई 2026 है। सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति

0: किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। आईएमएफ द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हमारा भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं का देश है, लेकिन हम सब एक हैं। सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश की उन्नति के लिए ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है। देश से प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिखाई देता है।

गुरु की महिमा शब्दों में नहीं समा सकती। उनका दिया हुआ ज्ञान अमृत के समान है, जो आत्मा को जागृत कर जीवन को सफल बना देता है। उनकी कृपा से मन में भक्ति, शांति और ईश्वर से मिलने की लगन जाग उठती है। ऐसे कृपालु सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।

प्रेम, भक्ति और समर्पण में मीराबाई अद्भुत मिसाल है। उन्होंने महलों का वैभव छोड़कर भजन कीर्तन का मार्ग अपनाया। उनकी रचनाओं में गहरा प्रेम और विरह की पीड़ा झलकती है। उनका विश्वास अडिग था कि सच्चा प्रेम केवल प्रभु में है। आइए सुनते हैं मीराबाई का ये भजन।

जब भक्त का मन दुनिया की चमक दमक मोहमाया और स्वार्थ से हटकर प्रभु प्रेम में लगने लगता है, तब उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। उसे न मान सम्मान की इच्छा रहती है, न धन दौलत का अभिमान। उसके लिए सबसे बड़ा सुख प्रभु का नाम, उनकी भक्ति और उनके चरणों में समर्पण बन जाता है। आइए सुनते हैं संत कबीरदास जी की ये रचना।

जब भक्त भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल होता है तब उसकी हर सांस प्रभु के नाम का जप बन जाती है। नैनों में दर्शन की प्यास और हृदय में अटूट विश्वास जाग उठता है। उसकी एक ही पुकार होती है, हे प्रभु एक बार अपने दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना, ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: हम सब अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, कभी सफलता के पीछे, कभी पैसों के पीछे, तो कभी दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में। लेकिन इस भाग दौड़ में हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भूल जाते हैं, खुद को। हम अक्सर बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, लेकिन कभी खुद से मिलने का समय नहीं निकालते। आईने में तो हम रोज खुद को देखते हैं, पर हम देखते क्या हैं? अपना बाहरी रूप और सौंदर्य। आईना हमें हमारे बाहरी रूप में अगर कोई कमी हो तो वो बता देता है, परंतु अगर हमें हमारे व्यक्तित्व के भीतर के गुणों और अवगुणों को जानना है, तब आत्म मंथन की आवश्यकता होती है। आत्म मंथन का अर्थ है स्वयं के विचारों, कर्मों और भावनाओं का गहराई से विश्लेषण करना, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर झांक कर अपनी अच्छाइयों और कमियों को समझने का प्रयास करता है। जब हम शांत होकर अपने मन से संवाद करते हैं, तभी हमें अपनी वास्तविक पहचान का अनुभव होता है। ये हमें जानने में मदद करता है कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इससे न केवल हमारा व्यक्तित्व निखरता है, बल्कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को भी स्पष्ट रूप से पहचान पाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आत्म मंथन एक ऐसा दीपक है जो हमारे अंदर के अंधकार को दूर करता है। ये हमें अंधकार से दूर और सत्य के करीब ले आता है। जब हम अपने भीतर सुधार करते हैं, तभी हमारा बाहरी जीवन भी सुंदर बनता है। हम अधिकांश अपनी काल्पनिक दुनिया में उलझे रहते हैं, दूसरों की भौतिक सुविधाओं को देखकर अपने मन को अशांत करते हैं, और जब हमारा मन विचलित होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मुझे शांति कैसे मिलेगी? गुरु ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, इसमें देखो और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य बोला, मुझे अपना चेहरा दिख रहा है। फिर गुरु ने उसी दर्पण के पीछे चांदी की परत दिखाते हुए कहा, जब इस परत को हटा दिया जाता है तो ये केवल एक साधारण कांच रह जाता है, जिसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। फिर गुरु बोले, ठीक इसी तरह जब तक मन पर अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों की परत चढ़ी रहती है, तब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं देख पाते। यही आत्म मंथन है, अपने मन से उन परतों को हटाना जो हमें सच्चाई से दूर करती है। आत्म मंथन हमें सिखाता है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें। आत्म मंथन का अर्थ केवल अपनी गलतियों को ढूंढना नहीं है, बल्कि खुद को समझना, सुधारना और बेहतर बनाना है। जब हम रोज कुछ समय अपने साथ बिताते हैं, तो हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्म मंथन एक ऐसा प्रकाश है जो हमारे अंदर के अज्ञान और अंधकार को दूर करता है। ये हमें सच्चाई, सरलता और संतुलन की ओर ले जाता है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इसमें आज सुनिए वर्षा जल संचयन विषय पर। आलेख का वाचन कर रहे हैं तुलसा दरगैया।
4: किसान भाइयों, वरसात का पानी का कोई मानव निर्मित आहवा क्षेत्र में इकट्ठो करी ओका संचय करने की प्रक्रिया का हम वर्षा जल संचयन कवाए। एक हम घर की छत पर या पहाड़ी के ढाल पर या कृत्रिम भूमि पर बने कृत्रिम तल नम भी एक संचयन करी सकान। साथ ही अर्ध शुष्क क्षेत्र न का लेना जल संचयन बहुत उपयोगी रहे, क्योंकि वहाँ साल भर सिंचाई का लेना पानी उपलब्ध नहीं होता है। जल संचयन को सबसे अच्छा लाभ ये कि एक सरल, सस्ती, दक्ष, पर्यावरण मित्र न टिकाऊ पद्धति छे। भाई बहन, विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही, एक कारण जमीन को जल स्तर लगातार नीचे जा रही। एक लेना अधिशेष मानसून अफवाह जो पानी बहीन सागर में मिली जाए उको संचयन न पुनर्भरण करना बहुत जरूरी छे। पशु नका लेना पीना की पानी की उपलब्धता फसल की सिंचाई का विकल्प का रूप में जल संचयन प्रणाली को अच्छी माने जाए। जल संचयन में हम घर की छत, स्थानीय कार्यालय की छत या फिर विशेष रूप से बनाए क्षेत्र से बारिश को पानी इकट्ठो करी सकन। एक हम दो तरह का गड्ढा बनी सकन, एक गड्ढा जिका में दैनिक प्रयोग कर लेना जल संचय करी सकन न दूसरा को सिंचाई का रूप में अपन काम में ले सकन। दैनिक प्रयोग का लेना पक्का गड्ढा का सीमेंट न ईट से हम बनी सकन जेकी गहराई 7 से 10 फीट न लंबाई चौड़ाई लगभग 4 फीट रहे। इन गड्ढा नखा नाली न नली नखा द्वारा छत की नाली न टोटी न सी जोड़ी देवा जेका सी वरसात को पानी सीधो इन गड्ढा न में पहुंची सका न दूसरा गड्ढा आसा कच्चा रखा जेका सी इनक खेत की एक हम सिंचाई करी सका। घर की छत से जमा किए पानी का हम तुरंत प्रयोग में लाई सका। जल संचयन बरसात का पानी का व्यर्थ बहुने से बचाव न का भविष्य का उपयोग जैसा कि घरेलू कार्य या सिंचाई भूजल स्तर का बढ़ाना का लेना बहुत अच्छी विधि छे। एक लेना अपना घर की छत पर गिरने वालों जो बरसात को पानी छे उसका पाइप न का जरिए फिल्टर करी न भूमिगत टैंक या सोखता गड्ढा न एकत्रित करी सकन। खेत या मैदान में बरसात का पानी का बहने से रोकना का लेना छोटा तालाब, डिग्गी, मेड़बंदी यानी खेत को पानी खेत में कभी मेड़ बनी देवांगा तो खेत को पानी बहने जाना को नहीं ऐसी रचना न हम बनी सकान। व्यर्थ पड़े जो बोरवेल छे या जो विशेष संरचना छे रिचार्ज ट्रेंच छे उका माध्यम से भी हम बरसात का पानी का सीधा जमीन का अंदर भेजी सकान। भाई बहनोनी, ई लगातार नीचे जा रहे भूजल स्तर का सुधारने में मदद करेगा। कभी हम पानी को बचत करांगा तो हमारो जो भूजल स्तर छे वो सुधरेगा। साथ ही गर्मी का महीना में या सूखा का समय में पानी की उपलब्धता भी बने रहेगा। ढलान वाला क्षेत्र न में पानी का तेज बहाव का रोकी न मिट्टी का कटाव का भी हम कम कर सकें। भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान जैसी चली जा रही न जो को मुख्य उद्देश्य है बरसात को पानी को जल संचयन, जल संरक्षण न पुराना जल निकाय जैसा कि जो तालाब छे, बावड़िए छे, ऐसा सुखई गाज उनको जीर्णोद्धार करनु छे। भाई बहनोनी, हमारा जो क्षेत्र में छे वर्षा को जल को संचित करने के लिए बहुत सारी संरचना को प्रयोग भी हुए जो कि ग्रामीण क्षेत्र न में बरसात को पानी वाटर सेट एक इकाई के रूप में लेना काम करे। गाँव न छत से पानी जो बहिन चली जाए तो रोकने का भी इंतजाम कर। शहरी क्षेत्र न में इमारत न की छत पक्का कच्चा क्षेत्र से जो प्राप्त पानी रह जो असुच बहिन चली जाए तेका से हमारा आसपास जो भी पानी जो हमारे छत को पानी जो छत पर आई रोज पानी वो हम पाइप न का द्वारा नीचे जमीन में उतारी देवा खेत का पानी का खेत में रोका मेड़ बड़ी लेवा जगह से खेत को पानी खेतन में रहेगा न बाद में वो पानी हमका सिंचाई करने का काम आवेगा। तो जो भी पानी व्यर्थ बहिन जाई रोका हम रोका न पानी को संचय तो हमका करनू क्योंकि बारिश की पानी की एक एक बूंद हमका बचावनू एक अलग केस द रेन अभियान चली जाई रोज जेका में हमका पानी की एक एक बूंद का बचाई न रखनू एक अलग हमका करनू का ही पड़ेगा कि हम हर घर सोसाइटी जो भी अपनो काम वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनावा सही जगह चुनी न रिचार्ज पीट न साफ्ट बनावा न अनुपयोगी बोरवेल न का ठीक कराड़ी न ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना में मदद करा बावड़ी कुआ या जो पारंपरिक जल संरचना है उनका सवारा ने इस्तेमाल का लायक बना मानसून का जल का अधिकतम संचयन हो एक अलग आसपास का तालाब जलाशय न सिगाद निकाले नो काम जल धारण क्षमता बढ़ावा जल ग्रहण क्षेत्र में अधिक से अधिक पेड़ लगे न ग्रीन कवर का बढ़ावा देवा इस प्रकार से हम पानी को संचय कर सका।
3: वर्षा जल संचयन अभी आप सुन रहे थे इस आलेख का वाचन कर रही थी तुलसा दरगैया और इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहां तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सदाबहार फिल्म संगीत सुनहरे पल हम आपको सुनवाएंगे 7:20 से। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुबह 8:30 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:00 आज आप सुनेंगे तारा सिंह डोडवे और साथियों की गाई लोक रचनाएं। सुबह 9:15 सुगम संगीत में आज के कलाकार होंगे पंकज उदास।

शास्त्रीय संगीत में सुबह 9:30 बजे सुनिए पंडित मणिराम जी का ख्याल गायन। आज आप सुनेंगे राग सावेरी तोड़ी। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत मन भावन होगा 10:05 से।

दिन में 1 बजे आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम। इसमें सावन पर विशेष कविता पाठ होगा, कवित्री होंगी निर्जा जैन। आपकी सुरक्षा आपके हाथ, क्रम में बारिश में वाहन चलाते समय रखी जाने वाली सावधानियों पर भी इस कार्यक्रम में बातचीत होगी।

युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युवावाणी होगा हर रोज की तरह शाम 5 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे से। शाम 6:30 बजे सुगम संगीत में आज की कलाकार होंगी मिताली सिंह और 6:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आनंदीलाल भावेल और साथियों की गाई लोक रचनाएं।

खेती गृहस्थी का प्रसारण समय है शाम 7:20 पर। सुर्खियों में, ये कार्यक्रम रात 8 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। मन भवन आप सुनेंगे रात 9:30 बजे से।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 बजे सुनिएगा पंडित वसंत राव देशपांडे का ख्याल गायन। आज आप सुनेंगे राग जय जयवंती।

0: अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी इंदौर है, समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे। संप्रति
1: वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मंत्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारताऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धिष्यति इति। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्री मोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एंथनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारताऑस्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्ण स्तंभेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्री मोदी तृतीये भारताऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंचे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि संबोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणं क्रयणम् इत्यादिनाम् संघटितानाम् अपराध प्रकाराणाम् निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्याम् ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मंचेषु आतंकवादरोधी सहयोगम् इतोऽपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणाम् अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् मध्यप्रदेशस्य श्योपुरनगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णं एकीकृतं आईएमएटी इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर राजस्थाने गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान

0: मध्य प्रदेश उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानाम केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वहि तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पंजीकरणं करणीयम्, अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पंजीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग

0: मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4था मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3रे मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी इंदौर है।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: पर सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

श्रोताओं, आज यानी गुरुवार दिनांक 9 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है तंत्रिका तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग, कारण, लक्षण और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर के एस रावत न्यूरोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। आज गुरुवार दिनांक 9 जुलाई 2026, समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। फोन करना ना भूलें। आज दिनांक 9 जुलाई 2026 सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर ये कर

0: मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा किसान
2: आकाशवाणी इंदौर।
0: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप।
5: ये आकाशवाणी इंदौर है। 7:10 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे।
6: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गाएं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, तीन दशक से जारी सरदार सरोवर विवाद का सर्वसम्मति से हुआ समाधान। आज भिंड में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रदेश के 9 जिलों में अति भारी और 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लेने और दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। वे मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से बातचीत भी करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और इसे अविस्मरणीय बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वित्त वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के वृद्धि अनुमान वैश्विक अनुमानों से दोगुने से भी अधिक हैं। रिपोर्ट में इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3% बताई गई है। इसमें अगले वर्ष 3.4% की वृद्धि की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश की औद्योगिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की चौथी नवीन विनिर्माण इकाई का लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां प्रदेश में निवेश, रोजगार और तकनीकी प्रगति को नई दिशा दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कंपनी प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए संबोधित किया।
2: 10,000 करोड़ से ज्यादा अलग किसान कल्याण वर्ष में किसान की इंडस्ट्री हो या रेलवे, अब बहुत तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग प्रकार की दुनिया में पहुंच रही है। ऐसे में हमारे उद्यमी तागोदी ब्रदर्स ने अपनी रेल के विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज बनाने का और रेलवे कोच बनाने तक का भी जो संकल्प लिया। हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से 272 करोड़ के अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली सभी प्रकार के वाहन साधनों की एक बड़ी इंडस्ट्री का भी हमने लोकार्पण किया। बीते 10 दिन के अंदर लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा अलग अलग प्रकार के कामों का विजन लोकार्पण किया है।
1: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कल कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लगभग 3 दशक से जारी पुनर्वास

0: एवं पुनर्बसाहट व्यय विवाद का सर्वसम्मति से समाधान हुआ है। इस निर्णय से मध्य प्रदेश पर पड़ने वाले वित्तीय भार में उल्लेखनीय कमी आएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 24 जून से संचालित 15 दिवसीय प्रदेशव्यापी सेफ क्लिक साइबर सुरक्षा 2.0 जन जागरूकता अभियान का कल समापन हुआ। भोपाल में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि तीन पूर्व प्रमुख चुनौतियों साइबर अपराध, नशे के विरूद्व जन जागरूकता और सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के संकल्प के अनुरूप मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सेफ क्लिक तथा नशे से दूरी है जरूरी व्यापक जन जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं।
2: वर्ष 2025 में हमने सेफ क्लिक अभियान साइबर जागरूकता का चलाया था और उसके काफी अच्छे परिणाम देखे गए थे। उसके पश्चात प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट में बहुत हद तक रोक लग गई थी, तो चूंकि साइबर फ्रॉडस्टर्स लगातार अपनी मॉडस ऑपरेंडी, अपनी कार्यप्रणाली चेंज करते हैं, तो उनसे बचाव के लिए पब्लिक को जागरूक करना महसूस किया जा रहा था। सेफ क्लिक 2.0 का 24 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था और 15 दिवसीय ये अभियान सारे जिलों में बहुत ही लगन से, मेहनत से चलाया गया। इसमें कई विभाग, कई संगठन, कई एनजीओस को हमने जोड़ा और करोड़ों की रीच इसकी रही।
0: 15 दिवसीय इस अभियान का समापन समारोह खंडवा के पुलिस कंट्रोल रूम में भी आयोजित किया गया। वहीं मंडला, आगरमालवा, झाबुआ समेत अन्य जिलों में भी अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार और अद्यतन डाटा सेंटर 3.0 परियोजना के लिए 800 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार मध्य प्रदेश स्टेट डाटा का आधुनिकीकरण, आईटी एवं डिजास्टर रिकवरी क्षमता विस्तार तथा संबंधित नॉन आईटी अवसंरचना विकास किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से भोपाल में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर 12 दिसम्बर 2012 से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उप निरीक्षक एवं सूबेदार भर्ती परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस को 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सूबेदार एवं उप निरीक्षक संवर्ग के 436 पुलिस अधिकारी मिलने जा रहे हैं। मंडल द्वारा 7 जुलाई को अंतिम परीक्षा परिणाम अपनी वेबसाइट पर घोषित किया गया, जिसमें 87% पदों का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें कुल 436 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें 313 पुरुष एवं 123 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराने के लिए 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, संशोधन, दस्तावेज सत्यापन, सीट आवंटन संबंधी मार्गदर्शन तथा शुल्क भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को यह मैच जीतना ही होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार कल पन्ना, छतरपुर और खंडवा सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, रतलाम, आगरमालवा, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ और निवाड़ी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसी के साथ विदिशा, उज्जैन, शाजापुर और मंदसौर सहित 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठकें जिला पंचायत सभागार में 13 से 15 जुलाई और 21 से 24 जुलाई तक होंगी। गुना की तहसील कुमराज के ग्राम बिरियाई में जिला प्रशासन द्वारा ग्राम चौपाल और सामाजिक संवाद सह रोजगार उन्मुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। मानसून की सक्रियता के चलते जबलपुर के रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बरगी जलाशय में बीते 5 दिनों में बांध का जलस्तर 3 मीटर बढ़ गया है। 31 जुलाई से पहले बांध के गेट खोले जा सकते हैं। शहडोल संभाग कमिश्नर ने ग्राम पंचायत मोहतरा के पोषक ग्राम चुनपथरी स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया।

प्रदेश मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष डॉ अवधेश प्रताप सिंह ने इंदौर रेजिडेंसी कोठी पर आयोग मित्रों के साथ मानवाधिकार संरक्षण सहित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मंडला जिले में 9 जुलाई को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सांची जनपद के ग्राम सनखेड़ी में 2,90,00,000 रूपये की लागत से बने क्षमता के नए उपकेन्द्र का लोकार्पण किया। सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे और बैतूल कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवड़े ने प्रभातपट्टन तहसील के ऐतिहासिक शेरगढ़ किले और वर्धा डैम पहुंचकर सुरक्षा एवं पर्यटन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ मैं हाजिर हूं आपका दोस्त राजेश जैन। आइए सुनते हैं आंखें फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज में, शब्दकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
5: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
6: आंधी, ये है फिल्म का नाम, आवाज लता मंगेशकर की, बोल गुलजार के, संगीत RD बर्मन का।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस तो लंबी थी ना।

साथी, ये है फिल्म का नाम आवाज अनुराधा पौडवाल। इसे लिखा है नवाब आरजू ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

शराबी। इस फिल्म के लिए किशोर कुमार का गाया गीत सुनिए। अनजान और प्रकाश मेहरा ने इसे लिखा है, बप्पी लहरी ने धुन बनाई है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। ये आकाशवाणी इंदौर है। 8 बजा चाहते हैं समाचार, हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में

0: भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रूपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रूपये तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस

0: के तहत 10,000 रूपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रूपए से 80 लाख रूपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से PF खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए

0: और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of copra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
2: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
1: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap business event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
2: लोकतांत्रिक

यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहां युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहां अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहां कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहां निहत थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहां असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमनसिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: सूचना हो, समाचार हो या
2: ये आकाशवाणी इंदौर है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनवाते हैं तारा सिंह डोडवे और साथियों की गाई ये लोक रचना।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं तारा सिंह डोडवे और साथियों की गाई मालवी लोक रचनाएं। आइए सुनते हैं इन्हीं से एक और मालवी लोक रचना।

0: तारा सिंह डोडवे और साथियों की गाई इस मालवी लोक रचना के साथ ही आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी इंदौर है, सुगम संगीत लीजिए। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में सुनिए पंकज उदास की आवाज में।

पंकज उदास की आवाज में गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, शास्त्रीय संगीत। लीजिए इस कार्यक्रम में सुनिए पंडित मणिराम जी का गाया राग सावेरी तोड़ी।

लागी तुम संग ला।

अभी आप सुन रहे थे पंडित मणिराम का गाया राग सावेरी तोड़ी, और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी इंदौर है। 10 बजा चाहते हैं, जिले की चिट्ठी भोपाल से रिले की जाएगी।
1: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, अब आप सुनेंगे दतिया जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

दतिया जिला इन दिनों राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरे जिले में जोर शोर से चल रही हैं। राजनीतिक दल गांव-गांव और वार्ड वार्ड तक पहुंचकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, फ्लैग मार्च, मतदान केंद्रों की तैयारियों और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 साल पुराने बैंक एफडी घोटाले के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी सदस्यता रद्द होने से उपचुनाव कराना जरूरी हुआ। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। नामांकन जांच 14 जुलाई तक और नाम वापसी 16 जुलाई तक की जा सकती है। मतदान 30 जुलाई को होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही नतीजे की घोषणा हो सकती है। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक बीते दिनों आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं बारिश की खबर का। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही दतिया जिले के किसान खरीफ सीजन की खेती में जुट गए हैं। जिले में धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग और तिल की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। कृषि विभाग किसानों को उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों की सलाह दे रहा है। समय पर बारिश से किसानों के चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा है। हालांकि वे अच्छी बारिश के सिलसिले के बने रहने की उम्मीद लगाए हुए हैं। दतिया जिले में 1 जून से अब तक कुल 494 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 264 मिलीमीटर कम है। दतिया जिला प्रशासन उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ अलग अलग विभागों के माध्यम से राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और जन कल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा में भी जुटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, विद्यालयों की व्यवस्थाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। बीते मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक श्री मयूर खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च शहर के मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के सामने एक चौराहे से होते हुए गंज, राजगढ़ मार्ग, टाउन हॉल, बड़ा बाजार, पटवा तिराहा, किला चौक, दारूगर की पुलिया, बिहारी जी मंदिर और तिगैलिया होते हुए प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी दतिया की पहचान लगातार मजबूत हो रही है। विश्व प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जिले में सामाजिक जनजागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। पौधरोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम, युवा गतिविधियां तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के जागरूकता अभियान लोगों तक पहुंच रहे हैं। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा जिला पुरातत्व, पर्यटन तथा संस्कृति परिषद दतिया एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में जिले के समस्त शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों द्वारा अपनी टीम का पंजीयन कराया जा सकेगा तथा इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में पंजीयन के लिए 25 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। प्रतियोगिता 7 अगस्त 2026 से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। दतिया के नागरिकों की अपेक्षाएं आज भी विकास, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निर्बाध बिजली, पर्याप्त पेयजल और सुरक्षित वातावरण को लेकर बनी हुई हैं। उपचुनाव के इस दौर में मतदाता केवल राजनीतिक वादों से आगे बढ़कर विकास के ठोस कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होंगी, लेकिन इसके साथ साथ खेती, विकास कार्य, प्रशासनिक सक्रियता और सामाजिक कार्यक्रम भी जिले की प्रगति की दिशा तय करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस लोकतांत्रिक उत्सव के साथ विकास की गति भी निरंतर आगे बढ़ेगी और दतिया नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर होगा। दतिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे दतिया जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी इंदौर है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन।

मन भवन सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के मन भवन का आरंभ करते हैं। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए, आवाज लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की, शब्दकार है आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहा है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर, सरिता प्रिंस और एकांश गवानकर, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवानकर, श्वेता सुमित गवानकर और ध्वनि गवानकर ने। बदलापुर मुंबई से इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है सिद्धांत और प्रणीता गवानकर ने। नांदेड़ जिला वाशिम से अशोक चुंबले, दिनेश, रुपेश, लीलाबाई चैताली और प्रीति चांद ने। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल पाटिल ने। पालदाना का इंदौर से इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफी मंसूरी। सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा चित्रा, निशा भंडारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

0: यादगार। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर का गाया और इंदिवर का लिखा गीत सुनिए। धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, मीनू राज, आदित्य श्रीमाली, श्रीराम श्रीमाली, सुशीला, मंजू, मालती श्रीमाली। इंदौर से बीआर नामदेव, राष्ट्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज और श्रीधा। सागर से इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा ने। इंदौर से अनिल कौचाले, सबिया, कमल, सीमा, पूजा नैनावा, सुषमा, स्मिता, मीनू जोशी और इनके परिवार के सभी सदस्य। यादव मोहल्ला सनावत से इस गीत के लिए हमें लिखा है दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, मुस्कान मालाकार और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: जिस पथ पे चला उस

साथी, ये है फिल्म का नाम, आवाज कुमार सानू की। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है बड़वाह से बाबूलाल महाजन, शोभा महाजन, संजय, विजय, अजय, संध्या, नीता, सोनल, सपना, सार्थक महाजन और इनके परिवार के सभी सदस्य। रावेर से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। ग्राम मोहत से मुशरफ खां तड़वी, जरीना, मुबारक, परवेज, रोजमीन और तैमूर तड़वी। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मिका बिरक ने।

आशा भोसले की आवाज में सुनिए नूर देवासी की रचना। धुन बनाई है ओपी नैयर ने, फिल्म का नाम है किस्मत। पसंद करने वाले श्रोता हैं मौताला से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोर से सानवी और सरवद देशमुख, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज रिफाकत, रानी तबसुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। रिंगनी छत्तीसगढ़ से इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने। लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल, केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

नीला आकाश। इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी का गाया गीत सुनिए। इसे लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने। इस गीत को सुनना चाहा है राजापेट अमरावती से दिलीप लकड़े, सुरेखा सारंग, शुभम ज्योति, तेजस्वी रवि, विराज मोहिते और इनके बहुत सारे दोस्त। धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी ने। बेरडे से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवाशेरे। इसी गीत की फरमाइश में भेजी है ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री। मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा, नीतू वेद और इनके बहुत सारे दोस्त। इंदौर से प्रकाश सेन, सुनीता सेन, रवि, कृष्णा, डुगू सेन और इनके बहुत सारे दोस्त।

साथ साथ, ये है फिल्म का नाम। आवाज़ चित्रा सिंह की, शब्दकार जावेद अख्तर, संगीतकार कुलदीप सिंह। पसंद आप सबकी। चांदूर बिस्वा से नारायण, विट्ठल राव खर्चे, ललिता, परी, संजना, गणेश, कार्तिक, ब्रोनो, उषा, सोरना खर्चे, स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। हिंगोली महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम, दीपाली राजू, रोहित, सोनू और मोनू ठोके। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा, अल्तमश, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।

आदमी और इंसान, यह है फिल्म का नाम। आवाज आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। पसंद करने वाले श्रोता, इंदौर से धनेश मटाई, राकेश, हनी, उमेश, जियांश, दियाना, जिम्मी, अमिता, अवध नारायण मटाई और इनके परिवार के सभी सदस्य। बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार, डॉली, पूजा और प्रभा देवी तामरिया। देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, राकेश महाजन, नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक, मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, कमल निगम, कैलाश महाजन, हरिराम, विष्णु, कपिल और निरंजन माली, जाकिर हुसैन, नजमी, नवीन वर्मा और विराट वर्मा। हिंगोली से रामचंद्र हिंगोले, सिद्धांत, टिकू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा और गौतम हिंगोले ने।

मुकेश की आवाज में सुनिए हसरत जयपुरी की रचना, संगीत शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर। सुनना चाहा है पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वाड़ोदे, चंद्र प्रभा वाड़ोदे और इनके परिवार के सभी सदस्य। इंदौर से दिनेश कुमार हार्डिया, ज्योति, राहुल, अमन, अजीत, अनुराग और कविता हार्डिया। ग्राम बनभगेरा छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि सारवा। गांधीनगर गुजरात से इस गीत के लिए हमें लिखा है सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा राठौर ने। अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब, साइमा, रऊफ और शहीद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके बहुत सारे दोस्त।

इस गीत के साथ ही आज का मनभावन कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त राजेश जैन को अनुमति दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी पंथरों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 11 बजा चाहते हैं अगला कार्यक्रम भोपाल से रिले किया जाएगा।

0: हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी।
1: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं आज के फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे में। आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आरंभ करें उससे पहले सुनिए मीठी मधुर दिलकश आवाज का ये गीत।

उम्मीद करते हैं आप इस आवाज़ को ज़रूर पहचान गए होंगे, और हमारे जो श्रोता नहीं पहचान पाए हैं उन्हें बता दें कि ये गीत अलका याग्निक की आवाज़ में है। हाल में अलका याग्निक जी को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। हम सभी के लिए और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी अत्यंत गौरव का क्षण था वो।

लेकिन क्या आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से अलका याग्निक की आवाज नए गीतों में हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? जून 2024 में खुद अलका याग्निक ने सार्वजनिक रूप से बताया कि उन्हें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस यानी अचानक सुनाई देना बंद हो जाना, यह एक दुर्लभ श्रवण विकार है जिसमें कान के भीतरी भाग या श्रवण तंत्रिका को नुकसान पहुंचता है जो वायरल

0: तो चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से और सुनते हैं कि वे क्या कहते हैं इस बारे में।
1: लेकिन हमेशा वो याद आते
0: हैं। हेलो,
2: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कार्यक्रम में बात आपकी, गीत हमारे।
2: जी मैम, संतोष कुमार राव बात कर रहा था, बिरसिंहपुर पाली उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी संतोष कुमार जी, स्वागत। और आप हमारे बहुत ही नियमित श्रोता है, कैसे हैं आप?
2: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम जी, क्योंकि आपके कार्यक्रम से लगातार जुड़ा रखते हैं, आपको पता है कि आप हम आपकी नियमित श्रोता हैं।
0: जी बिल्कुल। तो आज है कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे, और हमारा आज का विषय है कि कहीं आप तेज आवाज सुनने के आदि तो नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि तेज आवाज में हम टीवी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, या कहीं डीजे बजता है, तो आप कितने रेंज की आवाज में गीत संगीत को सुनते हैं?
2: जी तेज ध्वनि का हमेशा ही, मतलब अगर देखा जाए तो इसका असर हमारे खास करके मवेशियों में पड़ता है, बच्चों में पड़ता है, और खास करके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें तेज मतलब आवाज अगर सुनाई देता है तो उनको बहुत ज्यादा समस्याएं आती है, खास करके हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स भी उसमें से उत्पन्न होती है, और कान में सुनने की क्षमताएं भी कम होती है। तो तेज स्पीकर का हमें आविष्कार करना चाहिए, मतलब कि उसे थोड़ा सा एनर्जी दूर करना चाहिए, क्योंकि जो तेज स्पीकर होते हैं हमारे बहुत सारी समस्याओं को भी लेकर उत्पन्न कर देते हैं मैडम जी। खड़ी
0: जी जी। और आजकल हम देखते हैं कि अक्सर जो नई युवा पीढ़ी है वो हमेशा हेडफोन लगाए रखती है, मोबाइल से अटैच्ड रहती है, और वो न जाने कितनी तेज आवाज में सुनते हैं, तो इस बारे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं?
2: जी जो हेडफोन का उपयोग करते हैं, खास करके उनके जो सुनने की क्षमता होती है, आजकल हम लोग देखते हैं जैसे कि जिस प्रकार से भी हमने देखा है, अलका जी को देखा है, अलका याग्निक एक मुख्य कलाकार, मतलब अभिनय में जो उनकी आवाज थी बोलने की और गाने में इतना उन्होंने मधुरता लाई है, तो उनकी देख वो सुन भी नहीं सकती हैं और खड़े भी नहीं हो सकते, तो ये जो तेज ध्वनि के कारण ही ये सब कुछ उत्पन्न होते हैं, ये सारी समस्या। तो युवा पीढ़ी जो है खास करके हेडफोन लगा करके बातें करते हैं, गाने भी सुनते हैं और इसे इंजॉय के रूप में लेते हैं, तो ऐसा ना करें, ये हानिकारक है, और इससे बचाव रखेंगे तो अपने शरीर को खुद मेंटेन पाएंगे आप।
0: बिल्कुल, हमारी जो कार्यक्रम में आरंभ में जो हमने बात कही थी वही बात आपने इस कॉल में कह दी है कि अलका याग्निक जी बहुत बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि आज विधि की विडंबना देखिए कि जो गीत उन्होंने गाए हैं वो खुद नहीं सुन पाती है, कितनी अफसोस की बात है।
2: जी बिल्कुल मैम, इसीलिए और खास करके हमारे जो युवा मतलब हम जैसे युवा वर्ग की बात करते हैं, हम लोग तो ट्रांजिस्टर पर आपका कार्यक्रम सुनते हैं, और जो रेडियो की बातें होती है, रेडियो की ध्वनि बहुत धीमी होती है और जितनी भी सुनी जाए वो कम पड़ जाती है, रेडियो की धुन बहुत प्यारी होती है और रेडियो की वॉल्यूम बहुत तेज नहीं होती है, रेडियो ने बहुत कुछ हमें दिया है, और जो कार्यक्रम चलता है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम, इसके माध्यम से हम सभी युवाओं से भी अपील करना चाहते हैं कि हेडफोन की दूरी बनाए रखें, डीजे पर थोड़ा सा डीजे का वॉल्यूम कम करके अगर डांस कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, इससे हमारे जो घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग होते हैं इनमें इनकी देखभाल जरूर करें, और इसका ध्यान अवश्य रखें कि घर में बड़े बुजुर्ग भी उपलब्ध होते हैं।
0: जी वो भी रहते हैं, और कई बार ये होता है कि जहाँ डीजे बजता है उससे कितनी दूरी तक जो आवाज जाती है उससे भी कितने लोग परेशान हो जाते हैं कई बार, तो हमें भी इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हम ध्वनि प्रदूषण ना फैलाएं।
2: जी बिल्कुल मैम, और मैम बताऊं आपसे कि जैसे पेड़ों में रहने वाले पक्षी होते हैं, खास करके जब रात में डीजे बजता है उसकी रोशनी जाती है तो उनमें भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, वो लोग भी थोड़ा सा उनके अंदर भी थोड़ा सा वो रात में जाग जाते हैं, क्योंकि रात में सोने की अवस्था होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो पशुओं में भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि पशु पक्षी होते हैं उनमें भी श्रवण शक्ति तो आखिर होती ही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज उन्हें भी नुकसान पहुँचाती है।
2: जी बिल्कुल मैम
0: जी, धन्यवाद संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार
2: जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कार्यक्रम है बात आपकी, गीत हमारे, स्वागत करते हैं। अपना नाम बताइए।
1: नाम हमारा गिरधारी सेन है, दमोह से बोल रहे हैं।
0: जी गिरधारी जी, स्वागत है। पहली बार फोन लगाया आपने?
1: नहीं, हम तो लगाते रहते हैं, लेकिन ये है कि हफ्ता 15 दिन में या फिर महीना खाने से हो जाते।
0: बराबर है, बराबर है। कैसे हैं, आपके हाल चाल बताइए।
1: बढ़िया बढ़िया है मैडम,
0: बढ़िया है। तो आज जानते हैं आप, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में क्या बातचीत होती है और
1: आज का टॉपिक क्या है?
0: आज का टॉपिक है कि कहीं आप तेज आवाज में गीत संगीत सुनने के आदि तो नहीं है, और उसके क्या लाभ है, क्या नुकसान है। लाभ तो कम ही है, क्या नुकसान हो सकते हैं?
1: उसका ये है मैडम कि अगर जैसे अपन पड़ोस में सुन रहे हैं तो डिस्टर्ब होता है, जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बाजू में तो उनका भी डिस्टर्ब होता है, और जैसे अपन शौकीन है अपने संगीत के, तो अपने इतने से लोग बजाओ कि अपने तक सीमित रहे, दूसरों तक डिस्टर्ब ना हो।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, ये बात सही है कि हमारी वजह से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
1: जी जी मैडम, और
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी सिंह जी आपका। नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हाँ, ग्राम बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: जी कन्हैयालाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है।
0: बढ़िया है, आज
1: बारिश
0: कार्यक्रम
1: का आनंद ले रहे हैं।
0: अच्छा, बारिश हो रही है, बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात
1: जी,
0: है।
1: हाँ बारिश हो रही है ना अभी, हल्की हल्की बूंदाबांदी।
0: हाँ, वही हम पूछने वाले थे कि झमाझम हो रही है या हल्की फुल्की हो रही है।
1: हाँ हल्की हल्की हो रही है अभी, क्योंकि अभी तो अलर्ट हो रहा है अभी तो, इधर दिल्ली में नहीं, इधर था अभी समाचार में देख के आया।
0: जी। तो कन्हैयालाल जी, आज के कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, तो हमारे विषय पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं कि तेज आवाज में गीत संगीत सुनना, उसके क्या नुकसान है और इससे कैसे बचना चाहिए।
1: क्या वारिस है?
0: तेज आवाज में गीत संगीत
1: हाँ
0: या कोई भी, हम जैसे टीवी भी देखते हैं तेज आवाज में सुनते हैं, रेडियो
1: हाँ
0: है, डीजे गीत संगीत वगैरह इत्यादि जो भी चीजें होती है ना।
1: इससे क्या हो कि उसमें ध्वनि प्रदूषण होता है, और कम आवाज करेंगे तो उसमें क्या है कि किसको दिल का अटैक है तो वो उसमें क्या है कि बहुत मतलब परेशानी आती है, और कभी डेथ भी हो जाती है उसके।
0: जी
1: ऐसा ऐसा भी है हमारे गांव में हुआ है कि जो डीजे बज रहा है था ना, वहाँ पे क्या लगे हुए थे, क्या शादी चल रहा है था, फिर बाद में क्या हुआ कि उसको अटैक की बीमारी थी, तो वो ज्यादा ध्वनि थी, ध्वनि के कारण उसका डेथ हो गई।
0: जी, हम अक्सर समाचार पत्रों में भी ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि डीजे के
1: हाँ जी
0: तेज संगीत के कारण इस तरह के प्रभाव
1: हाँ,
0: हुए हैं, है
1: ये
0: ना।
1: हानि होती नुकसान होता है, सही
0: जी
1: बात है।
0: जी जी जी
1: अच्छा
0: जी धन्यवाद कन्हैयालाल जी, आपका शुक्रिया।

0: नहीं कि डीजे के
1: हाँ जी,
0: तेज संगीत के कारण ही इस तरह के प्रभाव
1: हाँ
0: हुए हैं, है
1: ये
0: ना?
1: हानि होती नुकसान होता है, सही
0: जी
1: बात है।
0: जी जी जी
1: देखो
0: जी धन्यवाद कन्हैया लाल जी, आपका शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, पीछे से रेडियो की आवाज़ बहुत तेज आ रही है, कृपया उसे कम कर दीजिए।
1: जी जी जी
0: जी।
1: आज फोन करेगी सुने कि बात आपकी गीत हमारे।
0: आज बात आपकी गीत हमारे है और हमारा विषय भी यही है कि जो अभी हमने आपको हिदायत दी कि रेडियो की आवाज़ कम कर लीजिए, तो आज विषय भी उसी से संबंधित है कि तेज आवाज में सुनने के क्या नुकसान है।
1: जी।
0: पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर।

0: जी जी
1: रहे
0: जी
1: हैं।
0: बोला जी,
1: जी
0: अम्बेडकर चौक से अग्रवाल खुराई से परमानंद बोल रहा मैं।
1: जी परमानंद जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
0: जी तो आवाज से आजकल कान देखो जी, कहीं जैसे स्कूल वगैरह है वहाँ हारन वगैरह ना बजाएं। दूसरी बात जी, आजकल हमने देखा है छोटे बच्चे बच्चे और जो भी रहते हैं हेडफोन लगा लेते हैं, उनके कानों पर असर पड़े। और अभी अभी एक सूचना मिली है कि अलका याग्निक के कान शायद, मतलब ऐसी रिपोर्ट आई है हमने देखा है कि उनके कान बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। तो उनसे सीख लें और कम आवाज में अपना काम करें, और कम आवाज में आपकी रेडियो वगैरह है, साउंड है आपकी, डीजे वगैरह अपन परात में जाते हैं तो कितनी धम धम की आवाज आती, दिल बिल्कुल धड़कन रोकने की मतलब
1: जी,
0: होते हैं उससे।
1: मतलब हम वहाँ खड़े रहते हैं तो हमारी भी धड़कन उतनी ही तेजी से चलने लगती है उस आवाज को सुनकर।
0: बिल्कुल घटना दुर्घटना हो चुकी और होती भी है,
1: होती भी है बिल्कुल
0: है।
1: और इससे ये होता है कि हमारी सुनने की शक्ति तो कम होती ही होती है, साथ ही साथ हमारे दिल पर भी कितना बुरा असर होता है इसका।
0: बहुत खतरनाक असर पड़ता है डीजे वगैरह।
1: तो आप तेज आवाज में सुनते हैं या कम आवाज में सुनते हैं?
0: हम तो रेडियो कम आवाज में सुनते हैं, वही चल रहा था प्रोग्राम
1: अभी तो हमें सुनाई दे रही थी तेज आवाज।
0: एफएम चल रहा था।
1: हाँ जी हाँ, चलिए कोई बात
0: आप
1: नहीं,
0: तो प्रोग्राम भी सुनते रहते
1: जी
0: जी।
1: परमानंद जी सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम, और अपने कानों का और अपने दिल का ख्याल रखते हुए खुद भी कम आवाज में सुने और दूसरों को भी कम आवाज में सुनने की सलाह दे। धन्यवाद
0: धन्यवाद मैम।
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बाद आपकी गीत हमारे स्वागत है आपका।
1: जी, हम ग्राम छात्र तहसील उदयपुरा से भगत जी बैरा की बात कर रहे हैं जी।
0: जी बैरागी जी, स्वागत है कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे।
1: बारे में हाँ जी, तो फिर आज को विशेष कहा
0: आज का विषय है कि तेज आवाज में जब आप सुनते हैं तो उसके क्या नुकसान है और उससे कैसे बचना चाहिए।
1: तेज आवाज में सुनते हैं तो हमें बहरापन हो जाता है
0: और
1: वो फिर इस चीज़ की संबंधित भी है, जैसे देर में हर एक बात सुनना, देर में हर बात को समझना का विषय है।
0: बस हम तो यही के पूछना चाहते हैं कि जो हमारा आज का विषय है उस पर आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे वो इसके नुकसान से बच सकें।
1: जैसे हमें हेडफोन लगा के गाना नहीं सुनना चाहिए, अधिकतर गाना हमें दूर से सुनना चाहिए। और कोई कोई तो हेडफोन लगा के सो जाते हैं और कान में मोबाइल चलत रही थे और भी सो जाते हैं और एकदम से भी उठाते हैं तो दिमाग की संतुलन खो बैठा था भी।
0: बराबर, बिल्कुल बहुत सही
1: बात कही। इसलिए हमें हेडफोन लगा करके गाना नहीं सुनना चाहिए
0: जी आजकल,
1: दूर से सुनो।
0: बिल्कुल, आजकल बच्चों में ये आदत देखी जा रही है कि ईयरफोन लगा लिया और सुनते सुनते नींद लग गई उनकी। और
1: हाँ, गाना सुनते सुनते नींद तो ये समझ कर
0: जी हाँ,
1: मोबाइल चार्ज पे लगा दो के बाद में सो जाओ।
0: बिल्कुल, और इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो गर्म वेव्स, जो हीट निकलती है वो कानों में अंदर हमें नुकसान दे जाती है कई बार।
1: वैसे तो आजकल आदमी गाड़ी भी चला रहे तो हेडफोन लगा कर चला रहा है।
0: कितनी गलत बात।
1: जैसे कहूँ गाड़ी पे कम फोन पे ज्यादा जाते तो एक्सीडेंट इसी समय हो जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार
1: जी। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। नमस्कार
1: जी। नमस्कार मैडम जी।
0: बताइए अपना नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? मैडम जी, मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ी से बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी देवीदास जी, कैसे हैं आप
1: जी? बढ़िया हूँ मैडम जी। और बरसात हो रही है।
0: तो ये जो बरसात की बूंदे है, इसकी आवाज आपके कानों को क्या कहती है, कुछ हमें बताएंगे?
1: अभी पानी आ रहा है, रिमझिम रिमझिम बरसात अच्छी बढ़िया हो रही है। और बरसात का मजा ले रहे हैं मैडम जी,
0: ले रहे हैं। तो इसकी
1: और बेटे बेटे आपके जो रेडियो से जो गाने आ रहे हैं वो भी सुन रहे हैं।
0: सुन रहे हैं जी। तो ये जो बरसात की रिमझिम आवाज है, ये कानों को सुकून दे रही है आपको?
1: हाँ दे रही है मैडम जी,
0: दे रही है। और जब यही आवाज बादलों की गरज के रूप में जब आपके सामने आपके कानों में पड़ती है, तब कैसा लगता है आपको?
1: बढ़िया लगता है मैडम जी एकदम। ये बरसात का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है, लेकिन उस गरज से, बादल की गरज से आपको ऐसा नहीं लगता है कि कानों पर कुछ प्रभाव होता है, अच्छा बुरा?
1: हाँ मैडम जी, जो ज्यादा जब एकदम तेज बिजली कड़कती है, जब कुछ असर होता है।
0: देवीदास जी, आज हमारा विषय भी यही है कि जब तेज आवाज हम सुनते हैं तो उसके क्या नुकसान है।
1: मैडम जी, ज्यादा तेज आवाज आए तो अपने को सावधानी बरतना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ जो आता है ध्वनि प्रभाव से थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। और थोड़ा जो अपने जो कान में जो है, थोड़ा बहुत सिर्फ कुछ ऐसा जो रुई के सहारे थोड़ा बहुत सावधानी वापरना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो जब बादलों की तेज गरज

0: होती है तब भी ये होना चाहिए कि हमें अपने कानों को थोड़ा सा सहारा दे देना चाहिए हाथ रखकर, ताकि तेज आवाज प्रभावित ना करें,
1: ये
0: है
1: मैडम जी,
0: ना। और
1: मैडम
0: आपने
1: जी इतनी
0: बताया
1: सावधानी
0: कि
1: बरतेंगे जी।
0: आपने बताया कि आप इसके साथ रेडियो भी सुन रहे हैं, तो कहीं बारिश की आवाज में आपने रेडियो की आवाज तेज तो नहीं कर दी है?
1: नहीं मैडम जी, जो पहले जो रेडियो चलते थे दिन कर के, उसमें जो खरखर की आवाज आती थी मैडम जी, जैसे बिजली का आवाज जो खड़कती थी, तो उसमें रेडियो की बहुत मतलब एकदम मिट्टी बताता है
0: जी।
1: जो बिजली की आवाज वो रेडियो में करती थी। और अभी जो परिवर्तन हुआ है मैडम जी, जो मतलब परिवर्तन जो हुआ है तो बहुत बढ़िया हुआ है। और जो हम अभी जो डिटेल से सुनते हैं मैडम जी,
0: मोबाइल पर सुनते हैं आप रेडियो, तो
1: मोबाइल पर भी
0: ईयरफोन।
1: सुनते हो जो डिटेल मैंने लगा रखा है। थैंक यू
0: तो
1: मैडम।
0: ये बताइए कि जब आप मोबाइल पे रेडियो सुनते हैं, तो उसे ईयरफोन पे हेडफोन लगाकर, ये ब्लूटूथ वाला हेडफोन लगाकर सुनते हैं, या नॉर्मल आवाज में सुनते हैं मोबाइल पर
1: नहीं
0: रेडियो?
1: मैडम जी, मैं मोबाइल से नहीं सुनता मैडम जी, वो जो डीटीएच लगा कर रखा है मैंने, हाँ, और जो दो डीजे मैंने बना कर रखा है, उसमें सुनता मैडम जी, बहुत मजा आता है और बहुत एकदम साफ सुथरा आता है।
0: साफ सुथरा आता है ना, बिल्कुल। तो ऐसी
1: हाँ
0: ही धीमी आवाज में और सुरक्षित माहौल में हमें अच्छा गीत संगीत सुनना
1: जी
0: चाहिए।
1: मैडम जी,
0: धन्यवाद देवीदास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात
1: हाँ।
0: करके।

0: हेलो
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी नमस्कार, कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्ते,
0: कौन बात कर रहे हैं? स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: हीरू पड़ियार
0: जी? जी बिल्कुल, आप पास जो शोर हो रहा है उससे आपको परेशानी नहीं हो रही है क्या? आपके आसपास बच्चे बात कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं।
1: हाँ।
0: तो आपको कुछ परेशानी नहीं हो रही है क्या उनकी आवाजों से, इतनी तेज आवाज से?
1: हाँ थोड़ी कम आ रही आवाज।
0: हाँ, और पीछे से देखो रेडियो की भी आवाज हमें आने लगी, तेज हो गया रेडियो।
1: हाँ।
0: तो इसके क्या नुकसान है जब ये तेज आवाज में हम सुनते हैं, तो ये बताइए। तो जब हम बारिश की आवाज के साथ में जब रेडियो आप सुनते हो, तो रेडियो की आवाज आपको बढ़ानी पड़ जाती होगी ना?
1: हाँ मैम।
0: तो फिर ये कानों को नुकसान नहीं देती है आपको क्या?
1: इसे मतलब हम ज्यादा नहीं सुनते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ।
0: और ये जो आसपास गीत संगीत कई बार डीजे में बजता है शादी में पार्टी में, तो उसको उससे कभी आपको कोई परेशानी हुई है?
1: हाँ जी मैम, ज्यादा ये डीजे वगैरह सब चलता है तो इसे ज्यादा अपन के ऐसे धड़क धड़क करता है, तो हम तो दूर ही रहते हैं इससे, मतलब पास पास में नहीं जाते।
0: और जब बच्चे
1: हाँ।
0: घर के आंगन के बाहर खेलते हैं और बहुत शोर मचाते हैं, तब आप क्या करते हैं?
1: हाँ वो उनको डांट देते हैं,
0: डांट देते
1: परेशान
0: हैं?
1: करते हैं तो
0: क्यों क्यों डांट देते हैं?
1: डांट देते लड़ देते, जोर से मत चिल्ला चोट करो, धीरे धीरे खेलो करके।
0: बिल्कुल, ताकि क्या है कि बच्चे जब चिल्ला चिल्ला के खेलते हैं तो उनका गला भी खराब होता है।
1: हाँ,
0: उनकी
1: पर वो
0: आवाज
1: समझते नहीं मैम।
0: हाँ जी, उनकी आवाज भी खराब होती है, और दूसरा जब वो चिल्लाते हैं तो दूसरों को ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि घर में हम आराम कर रहे होते हैं या हमारा मूड अच्छा नहीं है, तो हमें चिड़चिड़ाहट होती है।
1: हाँ तो ऐसे कहने जाते हैं मैम, तो फिर उनको माँ बाप अपन को फिर चिल्ला चोट करते, इनके बच्चे उनको नहीं मतलब अक्ल देते।
0: बराबर है, तो आप
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: अपन सही बात बोलते तो उनको बुरा लगता है।
0: बिल्कुल, आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि तेज आवाज के क्या फायदे या क्या नुकसान है। तो बातों बातों में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

श्रोताओ, आज के विषय पर आपसे बात करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जितना हो सके हाई रेंज में गीत संगीत सुनने से बचें।

आजकल शादी पार्टी में बजने वाला डीजे का गीत संगीत हमारे कान के पर्दों को अंदर तक हिला देते हैं। कई बार टीवी देखते समय, रेडियो सुनते समय तेज आवाज हमारी श्रवण क्षमता को धीरे धीरे प्रभावित करती है। मॉर्निंग वॉक पर जा रहे, गाड़ी चला रहे हैं तो कानों में ईयरफोन, हेडफोन आजकल आम तौर पर चलन में देखा जा रहा है। भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर आंगन में गूंजती किलकारी की खुशी आप महसूस न कर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि अपने बच्चों की तरक्की उनकी मुंह जबानी सुनकर आप अपनी आंखों में खुशियों का पानी न भर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि कम सुन पाने या ना सुन पाने की वजह से अपने जीवन की अनमोल खुशी से आप वंचित रह जाएं।

जरा महसूस कीजिए अलका याग्निक जी का वो दर्द कि जब पद्मश्री सम्मान के लिए उनका नाम पुकारा गया और वो खुद सुनकर उस खुशी को महसूस नहीं कर पाई। आज की युवा पीढ़ी से विशेष आग्रह करते हैं कि ईयरफोन हेडफोन का उपयोग कम करें, अपना पसंदीदा गीत संगीत आवश्यक हो उतनी ही रेंज की आवाज में सुने। लाइव कॉन्सर्ट की आज की उनकी खुशी कल के सपनों को धूमिल ना कर दे। जागरूकता के साथ अपनी श्रवण क्षमता को महत्व दीजिए और इस गीत को सुनते हुए अनुमति दीजिए आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका को आज का कार्यक्रम यही समाप्त करने की। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरें, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में उच्च स्तरीय भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बहुप्रतीक्षित तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में 11 और 12 तारीख को नागपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक के दौरान परिवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जा रहे तरीकों का आदान प्रदान और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने सेफ क्लिक 2.0 अभियान के समापन समारोह में बताया कि 15 दिवसीय इस अभियान के दौरान साइबर अपराध, नशे के दुष्परिणाम तथा सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। इलाके में भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। ये गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। सबसे पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म आशिक से। गीत को सुरों से सजाया मुकेश ने। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से। श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश। अगले श्रोता इंदौर से हैं श्रद्धा शर्मा, आयुष शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, विपिन मिश्रा और आशा शर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मेला से। ये खूबसूरत गीत लिखा है शकील बदायूं ने, गीत को संगीतबद्ध किया नौशाद ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सिंहपुर बड़ा से, श्रोता हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। अगली श्रोता कनेरा पटियाला से हैं, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। चलिए श्रोताओं सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अभिलाषा से। गीतकार है मजरू, संगीतकार है आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है नेपाल पैलेस सागर से। श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगले श्रोता खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला, गायत्री। अगले श्रोता खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

फिल्म शिकारी से अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है रजावत कॉम्प्लेक्स एमपी शाजापुर से। श्रोता है मनमोहन रजावत, राज, मधु, राशि रक्षित, चित्रंजन कमल उमेश, सरोज आरती कमल, रितिका रिचा स्वीटी सागर और ऋषभ रजावत। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह के स्वर में आप सुनेंगे, फिल्म बहार आने तक से। गीत लिखा इंदिवर ने, संगीतकार राजेश रोशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है घंटागढ़ चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अगले श्रोता महादेव घाट अम्बलेश्वर से हैं, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। अगले श्रोता भाटापारा दतरेंगी से हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा।

अलका याग्निक के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे। फिल्म का नाम दिल का रिश्ता। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार है नदीम श्रवण। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है डोगर गांव छत्तीसगढ़ से। श्रोता है राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। इन्हीं के साथ हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। अगले श्रोता बनियापारा धमतरी से हैं। रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, खुशी, शरद और पूजा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: जवान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की 1 बात है सही।
1: सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
5: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
7: आकाशवाणी इंदौर।
6: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
8: अरे रेवती ताई, या रविवारी आपल्याला उज्जैनला चलायचं आहे, तयार रहा बरं का?
9: मी नाही येऊ शकणार।
8: अरे आपल्याला सकाळी चलायचं आहे, काय त्रास आहे त्यात?
9: रविवारी सकाळी रेडिओवर मराठी कार्यक्रम येतो 10:30 वाजता, तो मी नक्की ऐकते, तो कधी सोडत नाही।
8: असं का? अरे पण आता आपल्याकडे मोबाईल आहे आणि रेडिओ आता मोबाईलवर सुद्धा ऐकता येतो।
9: अरे वा, हे तर खूपच छान, मग मी नक्की येणार।
8: तर मोबाईलवर ऐप न्यूज ऑन AIR डाउनलोड करा आणि त्यावर ऐका
9: मराठी कार्यक्रम।
8: तर नक्की ऐका प्रत्येक रविवारी सकाळी 10:30 वाजता
9: मराठी कार्यक्रम।

0: झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं,
0: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है का 8वां भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: दोस्त मिले?
2: हाँ जी बोलिए।
1: एक बात बताऊं?
2: जी जी।
1: अभी 4-5 दिन पहले मैं सूट पहन के,
0: अच्छा बढ़िया टाई सूट नया और जूते में पॉलिश वगैरह, ऐसा सब बढ़िया टिप टॉप बन के सब्जी बाजार गया।
2: सब्जी बता?
0: हाँ, अच्छा। आलू लेना था, बटा लेना था और वगैरह वगैरह धनिया मिर्ची वगैरह। लेकिन एक बात बताऊं, आलू महंगा मिला, भटा महंगा, गोभी महंगी, हरी धनिया मिर्चियां, जितनी भी सब्जी मैंने खरीदी सब महंगी मिली, सब महंगी। हाँ, और जब 2 दिन के बाद सूट मैंने नहीं पहना, मैंने क्या किया, एक पुराना सा मेला कुर्ता था मेरे पास, फटा पैजामा था,
2: क्या बात है,
0: एक रद्दी वाली स्लीपर थी, उसको पहन के मैं सब्जी लेने गया। अरे भैया, आलू सस्ता, भिंडी सस्ती,
2: भिंडी सस्ती,
0: गोभी सस्ती,
2: सस्ती,
0: ये हमारे आज तक नहीं समझ में आया कि लोग सूट जो पहन के आते हैं उनको महंगा क्यों देते हैं। हाँ यार, हमको महंगा दिया, और जब हम आपका कुर्ता फटा वाला पैजामा वगैरह पहन के गए तो हमको सस्ता दिया यार उन्होंने,
2: सस्ता दिया।
0: हाँ,
2: ये तो कपड़ों का असर लगता है हमको भैया, ऐसा लगता है कि सूट के कारण आपको महंगा दिया।
0: हाँ?
2: और फटे कुर्ते के कारण आपको सस्ता कर दिया।
0: हाँ?
2: औकात देख के।
0: हाँ?
2: अब आप तो एक काम कीजिए,
0: बोलिए,
2: कटोरा लेके चले जाते तो सब्जी फ्री में मिल जाती। एक साहब शौकीन तबीयत के थे, हमेशा अच्छा खाना और अच्छे पहनने पर ज्यादा विश्वास रखते थे, और शौकीन तबीयत के होने के कारण कभी कभार ड्रिंक वगैरह का भी शौक करते थे, और काफी इस तरह के शौक पालते पालते 4 दोस्त और यारों के बीच में काफी प्रसिद्धि पा गए कि साहब फला और अमुक व्यक्ति तो इतने ज्यादा शौकीन है कि इनके सामने खाने पीने की कोई भी वस्तु ला के रख दी जाए और इनकी आंख में पट्टी बांध दी जाए तो ये बिना देखे सिर्फ सूंघ कर ये बता सकते हैं कि ये कौन सा पदार्थ हमारे सामने रखा हुआ है। तो ये तो साहब बहुत अच्छी बात है, एक बार उनकी परीक्षा ली जाती है, आंख में पट्टी बांध दी जाती है, उनके सामने एक कप प्याली ला चाय की रखी जाती है, अब बोला जाता है कि साहब बताइए क्या है, आप फौरन सूंघ के बताते हैं साहब ये चाय है, दूसरे सेकंड में उनके सामने कॉफी का प्याला आ जाता है, बोले साहब ये बताइए ये क्या है, बोले साहब ये कॉफी है, तीसरे सेकंड में उनके पास टमाटर सूप का एक मग आ जाता है, बोले साहब ये बताइए ये क्या है, आप आंख में पट्टी बांधे लगातार सूंघ के बताते जा रहे हैं, बोले साहब ये टमाटर सूप है, उसके बाद एक ड्रिंक का पैग उनके सामने लाया जाता है ग्लास में भर के, बोले साहब ये क्या है, आप फौरन कोई ऐसा नाम बता देते, बोले साहब ये हेड वाइपर है, ये ब्रोक राइटर है, ये रूम साइटर है, ये जूनिक बॉक्स है, बोले साहब ये तो हर टाइप का ब्रांड पहचानते हैं, एक ग्लास में खाली पानी भर के इनको दे दिया, बोले साहब बताइए ये कौन सा ब्रांड है, अब पानी को जैसे ही सूंघते हैं उसको दोबारा सूंघने की आवश्यकता महसूस करते हैं, उसके बाद ग्लास रख देते हैं और फौरन बोलते हैं साहब ब्रांड जरूर नया है लेकिन मार्केट में ज्यादा दिन चलेगा नहीं। गीत और संगीत के बहुत सारे जोक्स और ऑब्जर्वेशंस आपने सुने होंगे, मैं एक ऐसा म्यूजिकल आइटम प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें एक अंग्रेज जो कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखता था और हमारे देश में काफ़ी समय से रह रहा था तो टूटी फूटी हिंदी भी बोल लेता था, लेकिन कुछ भजनों और गीतों को, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत पुरानी है और इसके लिए वो कई गीतों को पसंद किया और उन गीतों को वो अपनी भाषा में कुछ अंग्रेजी का समावेश करके कुछ हिंदी के शब्दों का चयन करके आप तक पहुंचाया करता और जो उसको पसंद था तो वो लोगों को सुनाया करता और लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते, वही कुछ बातें हमने भी सुनी आपकी प्रस्तुत आपकी नज़र कर रहा हूँ। सबसे पहले अंग्रेज एक भजन प्रस्तुत कर रहा है, मैं आपको वो ओरिजिनल भजन सुनाने जा रहा हूँ, वो भजन कैसा है और उसके बाद उसकी 2 लाइनों के बाद वो अंग्रेज अपने अंग्रेजी शब्दों के समावेश के साथ उस भजन को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, दोनों बातें एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अंग्रेज साहब से जब बोला गया कि आप इस तरह भजन तो हमको आपका बहुत पसंद आया है, लेकिन आप कुछ ऐसा कोई गीत सुना सकते हो तो साहब हमें बड़ा मजा आएगा। अंग्रेज साहब ने किसी हिंदी फिल्म के गीत को सुनाने का प्रयास किया, उसमें भी कुछ अपने शब्दों का समावेश किया। तो देखिए, हिंदी फिल्म का किसी हिंदी फिल्म का कोई अच्छा सा गाना जो शायद आ चुका हो या आने वाला हो आपकी नज़र कर रहे हैं अंग्रेज साहब,

लिया और अंग्रेज ने इस गीत को कैसे आप सभी के सामने, हम सभी के सामने प्रस्तुत किया, ये अंदाज प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंग्रेज इसी गीत को कैसे प्रस्तुत करेगा, अंग्रेज अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में।

0: हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
0: रे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
2: माहौल शादी का हमारे पूरे भारतवर्ष में समय समय पर होता आ रहा है और विगत हजारों सैकड़ों हजारों साल से होता आ रहा है ये माहौल शादी का। जब शादी के माहौल की हम एक जब शुरुआत करते हैं, लड़की को देखने का सिलसिला शुरू होता है, लड़का आता है, लड़की को देखता है और फिर सगाई होती है, लगुन भेजी जाती है, फिर शादी के और भी बहुत सारी रस्म पूरी होती हैं, तो इस सब माहौल को देख के बड़ा आनंद आता है। अब विश्वास करिए कि जब कभी भी आप किसी की शादी में जाते हैं मेहमान बनके उसके निमंत्रण पर,

मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो आपको अपनी शादी की बात जरूर याद आती होगी। जो कुंवारे हैं उनको तो खैर नहीं आती, क्योंकि वो तो खैर बेचारे सपने देखते रहते कि काश हमारी शादी होती, न जाने कब हमारी शादी होगी। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनको दूसरे की शादी देख के अपनी शादी की जरूर कहानी याद आती है। तो कुछ इसी तरह की बात मैं आपको सुना रहा हूं कि मेरी शादी में क्या क्या हुआ, ये मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि अभी कल ही मैं एक की शादी में गया था। बड़ा बढ़िया खाना पीना बना था, दूल्हे राजा बैठे थे, दुल्हन साहिबा आई, बहुत आनंद आनंद हुआ, गाना बजाना भी हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो मेरी अपनी शादी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई हैं, वो परेशानी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, परंतु आप सभी से ये निवेदन है कि आप किसी को बताएं ना कि मेरी शादी में क्या क्या परेशानी हुई है, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, आप हमारी आकाशवाणी के हैं, हम आकाशवाणी के हैं, आप हमारी आकाशवाणी के हैं, हम सभी फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन हमारी बात आप किसी को बताइएगा नहीं, है ना। चलिए ठीक है, तो मैं सुना रहा हूँ अपनी शादी की कहानी। हमारी बारात चली जबलपुर शहर से, चलती गई चलती गई चलती गई गुजरात पहुंची। जब गुजरात हमारी बारात पहुंची तो हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने हमारे ससुर को यानी होने वाले ससुर को पत्र के माध्यम से यह सूचना दे दी थी कि मेरा लड़का जो दूल्हा बन के आ रहा है वो कार में नहीं बैठेगा, जीप में नहीं बैठेगा, ना तांगे घोड़े पे बैठेगा, वो सिंगल घोड़े पे जरूर बैठेगा, इसलिए घोड़े की व्यवस्था की जाए। ठीक है साहब, हमारे ससुर साहब बड़े सीधे साधे थोड़ा पहलवान हैं, उनकी वैसे तो थोड़ा बुद्धि में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उनकी बालकनी लोग कहते हैं कि खाली है। तो ठीक है साहब, कहानी आगे हमारी शादी की बढ़ती है। घोड़े का इंतजाम किया गया, वो घोड़ा किसी के घर का नहीं था, सर्कस का घोड़ा था। अब सर्कस का घोड़ा दूल्हे के लिए बुलवाया गया। हम जैसे ही उस घोड़े पे बैठे, बैंड बाजे बजे, तो बैंड जब बजते थे तो वो घोड़ा नाचने लगता था, और जब वो नाचे तो हम गिर पड़े। अब बताइए, दूल्हा अगर घोड़े से गिर जाए तो कितना बुरा लगेगा। हम तो 5 बार गिरे, और 5 बार फिर कन्या पक्ष के द्वार पे हमारी बारात चली जा रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं। तो बैंड बाजे जब बज रहे थे तो स्वागत सत्कार हुआ, कन्या पक्ष वाले स्वागत के लिए खड़े हो गए, कोई फूल माला लिए है, कोई कुछ लिए है, कोई चावल लिए है,

वो पांच बार फिर उठ गए, फिर बैठ गए। चलिए ठीक है साहब, कन्या पक्ष के द्वार पे हमारी बारात चली जा रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं। तो बैंड बाजे जब बज रहे थे तो स्वागत सत्कार हुआ, कन्या पक्ष वाले स्वागत के लिए खड़े हो गए, कोई फूल माला लिए है, कोई कुछ लिए है, कोई चावल लिए है।

0: करने का है उसमें एक काम करो, पानी डाल के ले आओ। आइए साहब, आइए आइए साहब, आइए। बहुत अच्छे, पूरी बारात आ गई। अरे दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए। आइए साहब, आइए आइए। हाँ, अरे बैंड वाले भैया, ओ बैंड बाजे वाले भैया, ओ भाई बैंड बाजे वाले भैया, अरे जरा बंद कर देना भाई। अरे अरे मिलनी का प्रोग्राम होने वाला भाई, ओ बैंड बाजे वाले, अरे बंद करो, बंद करो।
1: ये किसने चिल्लाया बंद करो बैंड वाले भैया लोगों को? मेरे ससुर ने। वो जो ससुर हैं हमारे आज भी हैं, जीवित अवस्था में हैं, बहुत सारी उम्र भगवान से, उम्र भगवान से वो लेके आए हैं। उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया, पहलवान तो है वो, उन्होंने बड़ी जोर से चिल्लाया, बैंड बाजे वाले बंद कर दिए बजाना। बजाना क्या बंद कर दिए, वो तो घर चले गए। हाँ, उन्होंने रुकना पसंद ही नहीं किया, सीधे घर वापस। चलिए ठीक साहब, अब क्या होता है, हम तो दूल्हे बन के खड़े हुए हैं द्वार पे, घोड़े पे बैठे हुए, बड़ा मजा आ रहा था हमको। वैसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। क्यों शर्म आ रही थी? इसलिए शर्म आ रही थी कि हम पहली बार दूल्हा बने थे। पहली बार दूल्हा बने थे, तो कुछ शर्म भी आ रही थी और खुशी भी हो रही थी। ठीक है साहब, अब क्या होता है, जब कन्या पक्ष के द्वार पे बारात आती है, माहौल बड़ा खुशी का होता है, लोगों के मन, जितने भी कन्या पक्ष वाले हैं, जितने भी वर पक्ष वाले हैं, वो कुछ ना कुछ खुशी के गीत गुनगुनाते जरूर हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पर हमारी बारात में भी गुनगुनान का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन गुनगुनाने वाला कोई मनुष्य रूप धारण किए हुए नहीं था, वहां पर एक स्पीकर वाला भैया बैठा था, पुराने जमाने का स्पीकर वाला। उसके पास बड़े बड़े रिकॉर्ड थे, बड़ी अच्छी अच्छी पुरानी पुरानी कंपनी में। वो कौन कौन से रिकॉर्ड थे, आपने कभी आकाशवाणी से वो गाने सुने होंगे, बड़े पुराने पुराने गाने सुनाते आकाशवाणी वाले, और हमारे दूरदर्शन वाले भी बड़े प्यारे प्यारे गाने सुनाते भी हैं और दिखाते भी हैं। तो ये तो सुना रहा था कौन, हमारी शादी वाला स्पीकर वाला। पुराने जमाने का ग्रामाफोन था उसके पास। कौन सा ग्रामाफोन, आजकल तो क्या है, वो को टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं और रिकॉर्ड प्लेयर चलते हैं, सीडी वगैरह चल रही है, बड़ा मॉडर्न जमाना है। हम तो पुराने समय की कहानी आपको सुना रहे हैं, जिस समय ग्रामाफोन चला करते थे। वो उसने क्या किया, स्पीकर वाले भाई ने ग्रामाफोन में चावी दी। जब चावी भरी तब तो वो तैयार हुआ और चलने के लिए कौन, ग्रामाफोन। उसने पुराना रिकॉर्ड बजाया, हमने कहा वाह वाह वाह वाह, ऐसा रिकॉर्ड नहीं बजाना चाहिए। उसको मेरी शादी में जब कन्या पक्ष के द्वार पे बारात आई, उस समय स्पीकर वाले भाई को थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल अगर वो कर लेता तो कौन सा गीत बजाता, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएंगे बैंड बाजा। लेकिन नहीं, वो बुद्धिहीन था, अखंड बुद्धिहीन था वो। उसने मेरी शादी में जब मैं कन्या पक्ष के द्वार पर खड़ा हूं, घोड़े पे बैठा हूं, उस समय स्पीकर वाले भाई ने कितना गलत रिकॉर्ड बजाया ग्रामाफोन में चावी देने के बाद। अरे हाँ, उनके ग्रामाफोन में चावी देने की आवाज से मैं पहले आपको परिचय करा दूं, बड़ा अजीबो गरीब उसमें से साउंड निकलता है, कैसा आवाज, ये ग्रामाफोन में चावी देने की आवाज है, ये आपको हर बार सुनाई देगी। हाँ, चाहे आप आज सुन लो तो, कल सुन लो तो, क्योंकि उनका जो ग्रामाफोन था बहुत पुराने जमाने का था, सिकंदर आजम के जमाने का, कुतुबुद्दीन तुगलक, मोहम्मद गौरी शेर शाह सूरी के जमाने का था, शायद मोहन जोदड़ो की खुदाई में उनको मिला था, भगवान जाने कहां से मिला था। जब वो ग्रामाफोन में चावी देते तो ऐसी आवाजें आई। ठीक है साहब, अब हम खड़े हैं, अब देखिए कौन सा गलत रिकॉर्ड बजा रहा है, संपूर्ण गलत रिकॉर्ड, कौन सा।

बताइए, हम दूल्हा बन के खड़े हैं द्वार पे, घोड़े पे बैठे हैं, स्पीकर वाले भैया क्या बोलते हैं, आया आया अटरिया पे कोई चोर। बात गलत है ना? ठीक है साहब, हमारे ससुर साहब आ गए, भगवान उनका भला करे, थोड़ी सी बुद्धि उनकी कम है, पहलवान है। तो वैसे पहलवान खराब नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत समझदार होते, बड़े ज्ञानी होते हैं, हैं प्रभु भक्त होते हैं, लेकिन हमारे ससुर थे, थोड़ा सा अनोखा ही स्वभाव था उनका। वो हमारे पास आए, हमसे बोलते हैं, हाँ दूल्हे राजा, ए दूल्हे राजा अब आप आ गए हैं, हैं दूल्हे राजा अब आप नीचे घोड़ी से, ए दूल्हा, अरे ए दूल्हा, अबे ए दूल्हा नीचे उतर। तो हम उतरने की जगह

0: बाहर कन्या पक्ष वाले बोलते अरे दूल्हा गिर गया दूल्हा गिर गया, तो हम खड़े होकर बोलते हमने कहा किसने कहा गिर गया, ये तो हमारी स्टाइल है, हम ऐसे ही उतरते हैं। चलो साहब, कन्या को बुलाया गया, यानी मेरी धर्मपत्नी जो अब हो चुकी है, उस समय तो होने वाली थी, मेरी धर्मपत्नी को बुलाया गया। उनके हाथ में एक फूल माला, एक हाथ में मेरे फूल माला, मैंने उनको माला पहनाई, उन्होंने मुझे माला पहनाई। उस समय स्पीकर वाले भैया को बहुत अच्छा गीत बजाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो बुद्धिहीन था, अखंड बुद्धिहीन स्पीकर वाला था। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, जो हमारे मित्र वर्ग हैं जो मेरी शादी में मेरे साथ गए थे मेहमान बन के, उन सभी ने मुझसे बोल दिया था कि दूल्हे राजा इतना याद रखना, जिस समय तुम्हारी धर्मपत्नी पहली बार तुम्हारे सामने आए माल्यार्पण के लिए जयमाल के लिए, उस समय अपनी धर्मपत्नी का चेहरा देखना नहीं। तुमने क्यों भाई, वो तो मेरी पत्नी होने वाली है, मैं क्यों चेहरा ना देखूं? कहता नहीं नहीं मत देखा, उस समय नहीं देखते भाई, बड़ा बुरा लगता है, बाद में तो जीवन भर देखना है। हमने चलो भाई आपकी बात मान लूंगा, आंखें अपनी बंद कर लूंगा, नहीं देखूंगा। वहां पर हुआ उल्टा, मेरी जो धर्मपत्नी थी उनकी जो सहेलियां थी उन्होंने कुछ मेरी वाइफ से कुछ और अजीब सी बात कही। क्या कहा? सुनो दुल्हन, जब तुम्हारी शादी हो रही है ना, और तो जब तुम माला पहनाने अपने दूल्हे राजा के पास जाओगी ना, तो जब माला पहनाओगी ना, तो उस समय अपने पति का चेहरा देख लेना। हाँ, अगर एंड बैंड मोटर स्टैंड हो तो माला नहीं पहनाना। हाँ, नहीं तो एक बार माला पहना दी ना, तो समझ जाओ गई भैंस पानी में।
1: ठीक है साहब, उन्होंने मुझे माला पहनाई, मैंने उनको माला पहनाई, जयमाल हो गया। बड़ी खुशी का माहौल था, बहुत आनंद आ रहा था। उस समय स्पीकर वाले भैया को कुछ आशीर्वाद स्वरूप कोई बढ़िया सा गाना बजाते था, लेकिन नहीं, उसने नहीं बजाया, उसने अपने मन का किया। जब मेरी वाइफ ने मुझे देखा, होने वाली वाइफ ने जब मुझे देखा, उस समय वही पुराने जमाने के ग्रामाफोन में चाबी देने के बाद कौन सा रिकॉर्ड बजाता है, वो

0: मुद्दा मिल गया।
1: साहब कहानी आगे बढ़ती है, अब फेरे होते हैं। एक फेरा हुआ, भावरे जिसको हम बोलते हैं, एक फेरा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो जो हमारे पूजा कराने वाले श्रीमान जी आए थे, उन्होंने थोड़ा सा मालूम नहीं क्या बात है, थोड़ा लालच उनमें जरा ज्यादा आ गई थी, क्या इत्तेफाक था भगवान जाने। वैसे लालच आना नहीं चाहिए, लेकिन न जाने कौन थे वो, मुझे कुछ अजीब से लगे जो मेरी शादी करा रहे थे। वो श्लोक बोलते जा रहे हैं और कुछ अनोखी अनोखी चीजें की डिमांड भी कर रहे हैं। देखिए उनका श्लोक बोलने का तरीका और वो क्या क्या मांग रहे हैं, जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। ओम लड़का लड़की के नाना नानी काका काकी मासा मासी भाई भाभी सबको बुलाओ स्वाहा। अब साहब होती है विदाई, दूसरे दिन विदाई का मार्मिक बड़ा दृश्य होता है। विदा हो रही थी, सभी लोग रो रहे थे, कुछ लोग मजबूरी में रो रहे थे। मजबूरी में रो इसलिए रहे थे कि नहीं रोएंगे तो रिश्तेदारी में गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए लोग संतरे के छिलके आंखों में मार के रो रहे हैं, कुछ लोग पिपरमेंट लगा के रो रहे थे। चलिए साहब, जब पूरी जनता रो रही थी उस समय कन्या का छोटा भाई यानी मेरी धर्म पत्नी का भाई, मेरा साला हुआ वो, है ना, तो मेरा साला मेरे ससुर के पास यानी वो स्वयं अपने पिता के पास जाकर बोलता है,
2: कले बाऊजी अपनी दीदी बहुत रो रही है, बाऊजी बहुत रो रही है बाऊजी, वो जो जीजा जी जबलपुर से जो गोली पे बैठ के दूल्हा बन के आए हैं ना बाऊजी, ये तो बहुत हंस रहे हैं बाऊजी, अपनी दीदी रो रही है और जो जीजा जी हंस रहे हैं, ऐसा क्यों है बाऊजी।
1: तो मेरे ससुर ने, उस लड़के के पिता ने कितनी बात बढ़िया कही, कहा बेटा तुम्हारी बहन इसलिए रो रही है कि आज उसको आखिरी दिन रोना है बेटा, और तुम्हारा बहनोई जीजा जो जबलपुर से आया है वो इसलिए हंस रहा है कि बाकी जिंदगी उसको रोना है बेटा। कन्या की विदा हुई, दुल्हन साहिबा यानी हमारी धर्म पत्नी को हम विदा करा के जबलपुर ला रहे थे। उस समय स्पीकर वाले भैया को कोई बहुत अच्छा गीत बजाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो जो स्पीकर वाला था वो आकाशवाणी से संबंधित नहीं था, उसने पूरी तरह गलत रिकॉर्ड बजाया विदा के समय। कौन सा रिकॉर्ड बजाया देखिए।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की आठवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इसमें दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ बहुप्रतीक्षित तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में 11 और 12 तारीख को नागपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक के दौरान परिवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जा रहे तरीकों का आदान प्रदान और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने सेफ क्लिक 2.0 अभियान के समापन समारोह में कल भोपाल में बताया कि 15 दिवसीय इस अभियान के दौरान साइबर अपराध, नशे के दुष्परिणाम और सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। महाराष्ट्र हिंगोली जिले में आज भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। इलाके में भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और भारत इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में रात 10 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 1 बजा है। लीजिए अब सुनिए महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

सखियो, बारिश की रिमझिम फुहारों और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबुओं के साथ आप सभी सखियों का स्वागत स्वीकार कीजिए सुषमा व्यास का प्यार भरा नमस्कार। सखियो, बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक

हरियाली और नई ताजगी लेकर आता है। सूखी धरती भी बारिश की कुछ बूंदें पाकर खिल उठती है। पेड़ पौधे फिर से हरे हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सिखियो, जिस तरह से प्रकृति को खिलने के लिए बारिश की जरूरत होती है, उसी तरह हमें भी समय समय पर अपनी देखभाल की जरूरत होती है। सिखियो, हम घर के हर सदस्य का ध्यान रखते रखते ये भूल जाते हैं कि घर की सबसे मजबूत नींव तो हम ही है ना सिखियो। सुबह सबसे पहले उठना, सबकी पसंद का नाश्ता बनाना, बच्चों की चिंता, घर की जिम्मेदारियां, कभी नौकरी तो कभी परिवार, और इन सब के बीच अगर किसी का नंबर सबसे आखिर में आता है ना, तो वो होता है हमारा अपना। एक बात तो तय है मेरी प्यारी सखियों कि घरेलू जिम्मेदारियों के साथ स्वयं की देखभाल भी बहुत जरूरी है। कई बार ना सिर दर्द होता है, कमर दर्द करती है, थकान महसूस होती है, लेकिन हम क्या सोचती हैं, हम ये सोचती हैं चलो पहले काम निपटा लूं, बाद में देख लेंगे। और यही बात ना सखियों, कई बार हमारी सेहत पर भारी पड़ जाता है। बीमार होने के बाद इलाज करवाना समझदारी है, लेकिन बीमार ही ना पड़े इसकी कोशिश करना उससे भी बड़ी समझदारी है सखियों। इसलिए दिन भर में अपने लिए कुछ समय जरूर निकालिए, समय पर भोजन कीजिए, थोड़ी देर टहल लीजिए, अपनी नींद पूरी कीजिए। सखियों, सिर्फ शरीर ही नहीं, मन का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अपने पसंदीदा शौक के लिए समय जरूर जरूर जरूर निकालिए। एक बात तो तय है मेरी सखियों कि घर की जो जिम्मेदारियां है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपनी सेहत खो दी तो उन जिम्मेदारियों को निभाना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने परिवार के साथ साथ स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगी ना, खुश होंगी, तभी तो परिवार भी खुशहाल होगा। खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये तो बेहद जरूरी है, क्योंकि जो सखियां अपना खुद का ख्याल रखती है वही पूरे परिवार की सबसे मजबूत सहारा बनती है। तो अपना खूब ख्याल रखिए। और देखिए ना सखियों, मौसम जो है इस समय कितना सुंदर, कितना खुशनुमा हो चुका है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: सखियो, आज के डिजिटल दौर में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना पहले से भी कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बस जरूरत है सही जानकारी की। सखियो, भारत सरकार के द्वारा गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवार की महिलाओं की मदद करने के लिए उज्ज्वला योजना 3.0 की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन सखियो, अब आप इसका आवेदन अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही कर सकती हैं। सखियो, आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, एक पासपोर्ट साइज का फोटो और मोबाइल नंबर होना चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक कीजिए और उज्ज्वला योजना 3.0 का विकल्प चुन लीजिए और इसमें दी गई जो जानकारी है उसे भरकर आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। जैसे क्यों, अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसी पात्र महिला है जिसने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है, जो अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाई है ना, तो उन्हें इस योजना की जो जानकारी है वो जरूर दीजिए। सही जानकारी, सही समय पर उठाया गया कदम और थोड़ी सी जागरूकता जीवन को आसान बना सकती है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद सखियो, आपको सुनवाते हैं तृप्ति मिश्रा की खूबसूरत सी कविताएं इस कविता पाठ के अंतर्गत।
1: नमस्कार, मैं तृप्ति मिश्रा और आज आप सबके लिए कुछ कविताएं लेकर आई हूं। और इसमें आज जैसा कि स्त्री मन की बातें कर रहे हैं, नारी मन की बातें कर रहे हैं, तो शुरुआत करती हूं माँ से एक कविता। और आजकल हम सभी सखियों में बहुत सारी हम वर्किंग हैं, बहुत कामकाजी महिलाएं हैं और माँ के साथ एक संबंध होता है जब माँ हमारे घर आती हैं। तो कुछ भावनाएं हैं मेरी, कागज पे उतरी हैं, जुड़िएगा। आ जाती है मेरे घर में मेरी माँ, मेरी बिखरी जिंदगी समेटने मेरी माँ। आ जाती है घर में मेरी माँ, मेरी बिखरी जिंदगी समेटने मेरी माँ। सुबह सुबह आंगन बुहारती भिगाती मेरी माँ, अलगनी के कपड़े अलट पलट सुखाती मेरी माँ। समय से उतार कर उन्हें तहाती मेरी माँ, तितर बितर अलमारी देख उसे जमाती मेरी माँ। आ जाती है मेरे घर में मेरी माँ, मेरी बिखरी जिंदगी समेटने मेरी माँ। खाली पड़े डिब्बों को टटोलती मेरी माँ, कुछ बर्तनों को बेफजूल गंदा बोलती मेरी माँ। उन बर्तनों को घिस घिस के मांजती मेरी माँ, बचे अनाज इधर उधर करती मेरी माँ। आ जाती है मेरे घर में मेरी माँ, मेरी बिखरी जिंदगी समेटने मेरी माँ। मेरे हेयर डाई वाले रूखे बालों को देखकर अचानक नारियल का तेल लगाती मेरी माँ, जैसे सारी तरावट एक बार में उतार देगी, ऐसे मेरा सिर ठोकती मेरी माँ। मेरे तौर तरीकों पर कटाक्ष करती, मुझे आज भी अल्हड़ ही समझती मेरी माँ। आ जाती है मेरे घर में मेरी माँ, मेरी बिखरी जिंदगी समेटने मेरी माँ। नहाने जाती हूँ तो पीछे से सब्जी काट देती मेरी माँ, नहाने जाती हूँ तो पीछे से सब्जी काट देती मेरी माँ। ला रोटी मैं बना दूँ, ऐसा कई बार कहती मेरी माँ। चटनी पापड़ सलाद बिन आलस बनाती मेरी माँ, जिद कर एक रोटी ज्यादा खिलाती मेरी माँ। आ जाती है घर में मेरी माँ, मेरी बिखरी जिंदगी समेटने मेरी माँ। बाहर की चप्पल घर में लाने पर चिल्लाती मेरी माँ, पैर फट जाएंगे कहकर स्लीपर पहनाती मेरी माँ।

बैठ यूं ही दुनिया जहान की सुनाती मेरी माँ, दौड़ती जिंदगी में सुकून का एहसास कराती मेरी माँ, आ जाती है मेरे घर में मेरी माँ, मेरी बिखरी जिंदगी समेटने मेरी माँ, आ जाती है मेरे घर में मेरी माँ, मेरी बिखरी जिंदगी समेटने मेरी माँ। तो ये माँ पर कुछ पंक्तियाँ थीं और नारी मन की बातें हो रही हैं। तो हम सभी जो जिस उम्र में मैं हूँ, नम ना बड़े हैं ना छोटे हैं, तो उस उम्र की कुछ पंक्तियों से जुड़ती हूँ जब हम सभी के माथे पर अब उम्र की लकीरें नजर आने लगी हैं। सुनिएगा, उम्र की लकीरें नजर आने लगी हैं अब, उम्र की लकीरें नजर आने लगी हैं अब, अब कभी यूं ही साड़ी लपेट, अब कभी यूं ही साड़ी लपेट, फॉलन पल्ले के साथ कोहनी तक का ब्लाउज पहने, ढलते यौवन को छुपाती निकल जाती हूँ, और ग्रेसफुल दिखती हो ऐसा कॉम्प्लीमेंट पाती हूँ, आंखों पर चढ़ा चश्मा देख लोग मुझे इंटेलेक्चुअल कहते हैं, आंखों पर चश्मा चढ़ा देख लोग मुझे इंटेलेक्चुअल कहते हैं, इन्हें कौन समझाए अब बिन चश्मे के तो आंखों में, अरे इन्हें कौन समझाए बिन चश्मे के तो आंखों में मोतिया।

राजयोग है। झांकती हूँ आईने से, देखती हूँ, झांकती हूँ आईने में, देखती हूँ पीछे छूटे प्रारब्ध को, अपने अक्स में नजर आने लगी हैं अब उम्र की लकीरें, उम्र की लकीरें। तो ये उम्र की लकीरें, और मुझे लगता है कि अधेड़ उम्र की मेरी जितनी भी बहनें हैं वो सब अपने आप को जोड़ पा रही होंगी इन पंक्तियों से। अब अगली चंद पंक्तियाँ, हम में से कई माएँ हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, और सभी के बच्चे या खासकर से बेटे वाली जो माएँ हैं, क्योंकि स्त्री एक तरह से सेंसिटिव है, तो ये मेरा अपना अनुभव है कि जिनकी बेटियां हैं वो ज़्यादा ध्यान रखती हैं और बेटे अपने आप में खोए रहते हैं। तो सुनिएगा एक माँ के मन के भाव, आजकल जो घंटों बच्चे बैठे रहते हैं फोन लेकर, उस तरह से सुनिएगा। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं माँ हूँ तुम्हारी, जब घंटों बात नहीं करते चुपचाप किसी बुजुर्ग की तरह, जब घंटों बात नहीं करते चुपचाप किसी बुजुर्ग की तरह बैठे रहते हो किसी कोने में, बैठे रहते हो किसी कोने में अपना फोन लेकर, फिर आ जाते हो मेरे पास किसी बच्चे की तरह, मेरे गाल खींचते हो, कहते हो मेरी प्यारी माँ, कहते हो मेरी प्यारी माँ, कहकर फिर से चले जाते हो घर के किसी कोने में। तब भी मैं माँ हूँ तुम्हारी, तब भी मैं माँ हूँ तुम्हारी, जब कहते हो तुम मैं कुछ नहीं जानती, जब कहते हो तुम मैं कुछ नहीं जानती, डांटते हो क्यों नहीं सीखती, डांटते हो क्यों नहीं सीखती, ऑनलाइन काम करना, पूजा के वक्त करते हो उल्टे सीधे सवाल, पूजा के वक्त करते हो उल्टे सीधे सवाल, ओल्ड फैशन कहते हो, करने लगते हो बहस छोटी छोटी बातों पर, करने लगते हो बहस छोटी छोटी बातों पर, नहीं सुनते तुम मैं जो कहती हूँ, नहीं सुनते तुम मैं जो कहती हूँ, तब भी मैं माँ हूँ तुम्हारी, अना तुम्हारी मानती हूँ बेवजह, अना तुम्हारी मानती हूँ बेवजह, आज भी महसूस करती हूँ वही बचपन तुम्हारा, आज भी महसूस करती हूँ वही बचपन तुम्हारा, ठीक उसी दिन की तरह जब पहले दिन तुम मेरी गोद में आए थे, ठीक उसी दिन की तरह जब पहले दिन तुम मेरी गोद में आए थे, तो क्या, तो क्या अब नहीं समाते तुम मेरी गोद में, तो क्या जो अब नहीं समाते तुम मेरी गोद में, तब भी मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं माँ हूँ तुम्हारी। तो ये कविता, मुझे लगता है हम सभी जुड़ पाते हैं इन पंक्तियों से इस तरह की। और इसके साथ एक गज़ल पेश करती हूँ। जैसे मैंने कहा स्त्री मन की बात है और पीड़ाएं ज़्यादा हैं नारी के साथ, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए एक गज़ल जुड़िएगा। हर पंक्ति ने हर आंसू के दर्द का ही इजहार किया, हर पंक्ति ने हर आंसू के दर्द का ही इजहार किया, जीने की हर एक कोशिश ने क्यों जीना दुश्वार किया, जीने की हर एक कोशिश ने क्यों जीना दुश्वार किया, चुभती मुस्कानों को ओढ़े रही दौड़ती कांटों पर, चुभती मुस्कानों को ओढ़े रही दौड़ती कांटों पर, झांक के दुत्कारों के दर्पण में अपना श्रृंगार किया, झांक के दुत्कारों के दर्पण में अपना श्रृंगार किया। और सुनिएगा, बनके बेटी कभी बहन और माँ हूँ बनी संसार में मैं, बनके बेटी कभी बहन और माँ हूँ बनी संसार में मैं, हर एक घर को जान के अपना हर घर में त्योहार किया, हर एक घर को जान के अपना हर घर में त्योहार किया। और सुनिएगा, देती रही लोगों को मोहब्बत उनकी अपनी ही बनके, देती रही लोगों को मोहब्बत उनकी अपनी ही बनके, अपने ही लोगों ने मेरी पीठ पे क्यों है वार किया, एक पराए देश में आए बनके घर की कभी बहू, एक पराए देश में आई बनके घर की कभी बहू, तिनके तिनके घर को जोड़ा स्वर्गनुमा संसार किया, तिनके तिनके

0: के घर को जोड़ा, स्वर्गनुमा संसार किया और आखिर सुनिएगा, इसी आस में रही हूं जीती, इसी आस में रही हूं जीती, तृप्ति कभी मिल जाएगी, इसी आस में रही हूं जीती, तृप्ति कभी मिल जाएगी, इस सपने पर करके भरोसा, इस सपने पर करके भरोसा, खुद को सदा निसार किया, खुद को सदा निसार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सखियों, और मुझे लगता है आज आपको मेरी कविताएं और गीत पसंद आए होंगे, और फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार
1: सखियों। अभी हमने सुनी तृप्ति मिश्रा से कविताएं, बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी उन्होंने, बहुत ही अच्छी तरह से स्त्री मन की जो बातें थी वो उन्होंने शब्दों में बहुत सुंदर तरीके से गढ़ी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सखियों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सखियों, बात करते हैं सजने संवरने की। तो सखियों, बारिश का मौसम वैसे तो सबको बड़ा सुहाना लगता है, लेकिन इस मौसम में होने वाली उमस की वजह से चिपचिपाहट बनी रहती है, और अगर मेकअप किया हुआ हो तो दिन भर मेकअप को टिकाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के रूप लावण्य में बातें करते हैं लाइट और वाटरप्रूफ मेकअप की। सखियों, मेकअप करने से पहले ना चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और चेहरे पर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। इसके बाद प्राइमर जरूर लगाइए, क्योंकि यही आपके मेकअप का सबसे मजबूत साथी होगा सखियों। इसके बाद भारी भरकम फाउंडेशन की जगह पर आप बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम लगाइए, इसे ताकि जो आपका जो चेहरा है ना वो नेचुरल और लाइट लगे। आंखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अगर आप ना काजल लगाना पसंद करती है ना सखियो, तो वो भी वाटरप्रूफ काजल और मस्कारा लगाइए, बारिश की बूंदों से भी ये फैलेगा नहीं। और अगर लिपस्टिक की बात करें ना सखियो, तो वो मैट हो, मैट होनी चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग लिप टेंट को ही चुनिए, ताकि बार बार ना टचअप करने की आपको जरूरत ही ना पड़े। और आखिर में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट या फिर सेटिंग पाउडर लगाकर अच्छे से सेट कर लीजिए, और हाँ, मेकअप सेटिंग स्प्रे से मेकअप आप फिनिश कर लीजिए, तो जो आपका जो मेकअप है ना वो लंबे समय तक टिका रहेगा। और एक छोटा सा टिप मेरी प्यारी सखियों के लिए, कि अपने पर्स में टिश्यू या ब्लॉटिंग पेपर जरूर रखिए, अगर चेहरा ऑयली लगे तो उसे रगड़े नहीं, बस हल्के से दबाकर अतिरिक्त तेल हटा दीजिए। यकीन मानिए सखियों, इस बारिश में भी आपका जो लुक है ना वो परफेक्ट लगेगा, और परफेक्ट लुक के साथ अगर एक बहुत ही बेहतरीन गीत हो जाए तो चलिए सुनवाती हूँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत। गीत लिया है हमने फिल्म इजाजत से, आवाजें हैं आशा भोसले की।

सख्यो, इस खूबसूरत से गीत के बाद बात करते हैं फैमिली फिटनेस की। सख्यो, परिवार की खुशियों की असली नींव है सबकी अच्छी सेहत। जब घर का हर सदस्य स्वस्थ रहता है ना, तभी घर में मुस्कुराहट और सुकून बना रहता है। लेकिन बारिश के मौसम में थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है, इसलिए इस मौसम में सावधानी जो है ना बेहद ज़रूरी है। पीने के लिए हमेशा साफ पानी या फिर उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल कीजिए। इस मौसम में चटपटा खाने का ना सबका मन करता है, हमारा भी करता है सखियो, इसलिए बाहर का खाना खाने की बजाय घर पर ही बनाइए। इससे दो फायदे होंगे सखियो, ये ताज़ा भी होगा और स्वच्छता से भी बना होगा, इसलिए बीमार होने का डर भी नहीं रहेगा, है ना सखियो। तो घर पर बनाइए और चटपटा खूब सारा भले खा सकते हो आप। इसके अलावा सखियो, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छर ना पनपे और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हो सके। बारिश में भीगना हम सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक भीगने से सर्दी जुकाम हो सकता है। तो अपनी सेहत के साथ साथ बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, खासतौर पर छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखिए। बारिश का मजा तभी है ना सखियो, जब परिवार का हर सदस्य पूरी तरह से स्वस्थ हो, और ये जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। अभी सुनवाती हूँ एक और बहुत प्यारा सा गीत।

सखियो अब बात करते हैं सुरक्षा की। तेज बारिश हो या फिर रिमझिम फुहार, सड़कों पर फिसलन तो होती ही है, तो थोड़ा संभल कर चलना ही समझदारी है। ऐसे मौसम में कहीं निकलना जरूरी हो ना

जल्दी पहुंचने की चिंता को छोड़कर सुरक्षित पहुंचने को अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए। वाहन की रफ्तार हमेशा सामान्य रखिए और अचानक ब्रेक लगाने से बचिए। सिक्योर रास्ता कितना भी छोटा क्यों ना हो, हेलमेट और सीट बेल्ट को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। सिक्योर इस मौसम में ज्यादातर जगहों पर सड़कों पर पानी भरा हो ना, तो गहराई का अंदाजा मत लगाइए, तुरंत सुरक्षित रास्ता चुनना ही बेहतर होता है। अगर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही हो ना, तो सामने साफ नहीं दिखाई देता है, तो ऐसी सिचुएशन में सुरक्षित स्थान पर रुककर मौसम सामान्य होने का इंतजार करिए। याद रखिए सखियों, मंजिल पर थोड़ा देर से पहुंचना बेहतर है बजाय जल्दबाजी में खुद को जोखिम में डालने के। तो सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और हर सफर को सुरक्षित बनाइए और हमारा इस कार्यक्रम सुनते रहिए। सखियों, हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। तो अब अनुमति दीजिए सुषमा व्यास को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे इंदु बाला मिश्रा के गाए लोकगीत। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए इंदु बाला के स्वर में ये लोक भजन।

इंदु बाला मिश्रा के स्वर में अभी आपने सुना लोक भजन। लीजिए अब सुनिए झूला गीत, स्वर इंदु बाला मिश्रा का है।

इंदुबाला मिश्रा के गाई इस कजरी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे शुभ्रा बैनर्जी के गाए गीत और भजन। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए शुभ्रा बैनर्जी के स्वर में ये भजन।

शुभ्रा बनर्जी के स्वर में अभी आपने सुना भजन। लीजिए अब सुनिए शुभ्रा बनर्जी की आवाज़ में ये गीत।

0: आकाशवाणी इंदौर।
1: इस समय आप है हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा किशान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: इंदौर।
1: मालवा की शान
2: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत,
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म भागम भाग का ये गीत। गीत समीर का है और संगीत है प्रीतम का।

सईद कादरी का लिखा अन्नू मलिक के संगीत से सजा हुआ गीत सुनिए आमिर जमाल की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मर्डर।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप और डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर की भी शुरुआत की गई है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील का दौरा किया। उन्होंने यहां किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 4 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं। एक लाइन बहाल कर दी गई है और अब ट्रेनें 2 इंजनों के साथ चलाई जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण दौरे पर प्रदेश में आए हुए हैं। कल देर रात में मंदसौर जिले के करोट स्थित रुपरा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं और हाईवे के कारण खेतों में पानी भरने की समस्या पर ध्यान देने की अपील की। करीब 1,10,000 करोड़ रूपये की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे का करीब 244 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। उन्होंने भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना की। करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा उन्होंने पैदल पूरी की।

आगे है। भारत को श्रृंखला में बने रहने के लिए मैच जीतना बेहद जरूरी है। तीसरे मैच में भारत को 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने कल जिले के मालखेड़ा और जावी गांवों में जैविक खेती कर रहे किसानों के खेतों का निरीक्षण कर प्राकृतिक खेती की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जल जनित बीमारियों से बचाव के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के ग्राम थड़ौदा के प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। शिवपुरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कल स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण सुरक्षा का कवच विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया। झाबुआ कलेक्टर ने कल जिले के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों, मध्याह्न भोजन और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। भिंड में मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को किया जाएगा। राजगढ़ के सभी पेयजल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी

0: अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
0: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
1: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
0: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपने समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को, इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।

0: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
1: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
2: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था। रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले कुछ दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
2: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपकी पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर, फिल्म जुर्म से। आवाजें हैं साधना सरगम और कुमार सानू की। गीत लिखा है इंदिवर ने और इसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। और फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। बेलाताल दमोह मध्य प्रदेश से रवि खरे, सुनील खरे, बबीता, रजनी, आदित्य और अनुश्री खरे ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म जुर्म का ये गीत।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत लिखा है गुलजार ने और इसे संगीत से सजाया है खयाम ने। लीजिए सुनिए।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अब सुनिए फिल्म हसीना मान जाएगी का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। बोल अख्तर रुमानी के हैं और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क मध्य प्रदेश शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश उमेश, सरोज आरती रेखा, रितिका रिचा, स्वीटी सागर रिया और ऋषभ राजावत की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म हसीना मान जाएगी का ये गीत।

छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म धनवान का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है साहिर ने और इसे संगीत से सजाया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है आप सभी की फरमाइश पर फिल्म कन्यादान से। नक्श लैल पुरी का लिखा ये गीत जिसे संगीत से सजाया है खयाम ने और आवाज़ है लता मंगेशकर की। पसंद आप सभी श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर की।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन

अपने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील का दौरा किया। उन्होंने यहां किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निरीक्षण दौरे पर प्रदेश में आए हैं। कल देर रात वे मंदसौर जिले के करोट स्थित रूपरा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। उन्होंने भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना की। करीब 5 किलोमीटर की यह परिक्रमा उन्होंने पैदल पूरी की। रास्ते में श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। केंद्र सरकार ने कृषि अंतरीकरण उपमिशन के तहत किसानों को बड़ी मदद की है। अब तक देश भर में किसानों को लगभग 22 लाख कृषि मशीनें दी गई हैं। इनकी कीमत करीब 9,404 करोड़ रुपए है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना ग्वालियर दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें, हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा कृषि में महिला उद्यमिता के विकास, इस विषय पर डॉक्टर अपर्णा जायसवाल से की गई भेंटवार्ता। समय याद रखिएगा शाम 7:21। रात 8:00 आप सुनेंगे सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:15 पर और रात 9:30 पर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे रात 10:00 और रात 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वसंत रानाडे का राग कमोद में वायलिन वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02 और 22 सेकेंड हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी इंदौर सुन रहे आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ अनुभूति
1: और मैं आपकी दोस्त काजल। आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जरा खिड़की के बाहर देखिए, शायद आपके यहाँ भी आसमान में काले घने बादल छाए होंगे, ठंडी हवाएं चल रही होंगी और रिमझिम फुहारे बरस रही होंगी, यानी कि आज का मौसम बेहद ही सुंदर और बेहद ही सुहाना है।
0: बिल्कुल काजल, और जब मौसम इतना सुहाना है तो युववाणी का स्पेशल होना तो बनता है, इसलिए आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो बारिश स्पेशल है। तो अगले कुछ समय आप और हम मिलकर इन्हीं बारिश की बूंदों का आनंद लेने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने अनुभूति, क्योंकि होना भी चाहिए। बारिश सिर्फ पानी का बरसना थोड़ी होता है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है, और इसी के बारे में आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। और बिना देरी किए शुरू कर देते हैं आज का कार्यक्रम और इसी के साथ पूछ लेते हैं आज के प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है अनुभूति?
0: हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में अधिकांश वर्षा किन मानसूनी हवाओं से होती है?
1: और हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी?
0: तो दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर आप खोज कर रखिए, कार्यक्रम के अंत में हम इसके उत्तर बताएंगे, तो आप अपने उत्तर भी मिलाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बारिश, श्रोताओं, ये सिर्फ एक मौसम नहीं है, इसे सिर्फ एक मौसम नहीं कहना चाहिए, बल्कि यादों का सबसे प्यारा पता कहना चाहिए। पहली बूंद गिरते ही जाने कितनी सारी पुरानी बातें

0: मन में दस्तक देने लग जाती हैं और उन यादों में सबसे चमकीला रंग होता है बचपन का।
1: सही कहा। आज की बारिश देखकर जब मैं सुबह देख रही थी बारिश, तो वही दिन याद आ गए काजल, जब हम छोटे थे, जब बादल आते ही हम आसमान नहीं स्कूल की छुट्टी देखते थे और अगर छुट्टी मिल जाए तो समझिए दिन बन गया।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर शुरू हो जाती थी कागज की नाव बनाने की प्रतियोगिता। हर किसी को ये लगता था कि उसकी नाव सबसे दूर जाएगी और अगर रास्ते में किसी की नाव डूब भी जाए तो दुख बस 2 मिनट का होता था, क्योंकि अगली नाव बनाने का उत्साह उससे कहीं बड़ा होता था।
1: और बारिश में भीगने का मजा, उस समय ना मोबाइल की चिंता थी, ना कपड़ों की, ना यूनिफॉर्म की, बस एक ही मिशन होता था हमारा, जितना हो सके उतना भीग लो। घर पहुंचकर ही मम्मी की डांट तो पड़ती थी, लेकिन उसी के साथ गरम गरम पकौड़ों की खुशबू सारी शिकायतें भुला देती थी।
0: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी लगता है कि हम बड़े तो हो गए लेकिन बारिश आज भी वैसी ही है, वही रिमझिम, वही मिट्टी की सौंधी सी खुशबू, वही ठंडी हवा। बदल गए हैं तो बस हम। अब भीगने से पहले हम फोन बचाते हैं, और बचपन में फोन नहीं था, बस बारिश हमें बचानी होती थी और उसके मजे लेने होते थे।
1: बिल्कुल, और शायद इसीलिए बारिश हमें बार बार याद दिलाती है काजल कि जिंदगी सिर्फ भीगने का नाम नहीं, कभी कभी रुककर बूंदों को महसूस करना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा। इसी बात पर 2 पंक्तियां अर्ज है कि बारिश ने जब भी दस्तक दी दिल को यही फरियाद की, थोड़ी सी उम्र लौटा दो, थोड़ी सी वही आजादी।
1: और मौसम की कुछ यादें उम्र के साथ पुरानी नहीं होती, बस हर बारिश में फिर से नई हो जाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, इस सुहाने मौसम में अगर कभी बारिश आपको अपनी ओर बुलाए तो एक पल के लिए ही सही, अपने भीतर उस नन्हे से बच्चे को जरूर बाहर जाने दीजिए। और इसी के साथ सुनिए ये गीत।

0: दोस्तों, अभी हमने बात की थी बारिश और बचपन के बीच में क्या रिश्ता होता है उस बारे में, और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं एक और सुंदर से सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है बारिश और प्रेम। अनुभूति, तुम्हें नहीं लगता कि बारिश के मौसम में उसकी जो हवाएं होती हैं उसमें एक अजीब सी ही सुंदरता, एक अजीब सा ही एहसास भरा हुआ होता है?
1: बिल्कुल। वैसे काजल, आज तो तुम्हारी बातों में भी शायरी झलक रही है पर तुम्हारी बातें 100% सच हैं। बारिश और प्रेम का रिश्ता बहुत गहरा है। जब आसमां जमीन से मिलने के लिए बरसता है तो दिल भी अपनों के करीब आने के लिए मचलता है।
0: कितनी सुंदर बात कही तुमने। इस मौसम की वो ठंडी फुहारें जब चेहरे को छूती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे से कानों में मोहब्बत की बातें कह रहा हो। एक हाथ में गर्मा गर्म चाय का कुल्हड़ और दूसरे हाथ में किसी अपने का साथ, इससे खूबसूरत एहसास और क्या ही हो सकता है।
1: ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे प्रेम सिर्फ इंसानों से हो ये जरूरी तो नहीं काजल। इस मौसम में तो प्रकृति से प्रेम हो जाता है। सूखे पेड़ पौधे फिर से हरे हो जाते हैं, वो मिट्टी की सौंधी सी खुशबू और नदियां मुस्कुराने लगती हैं, ये सब कितना अच्छा लगता है। ये मौसम हमें खुद से और अपनी जिंदगी से दोबारा प्यार करना सिखाता है।
0: कितनी गहरी बात कही है तुमने अनुभूति। तो श्रोताओं, चलिए इसी प्यार भरे एहसास को सुरों में पिरोते हैं और सुनते हैं ये सावन और मोहब्बत का सुरीला सा गीत।

0: अच्छा काजल, जब भी बरसात की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो सौंधी सी खुशबू के साथ हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है?
1: जाहिर सी बात है अनुभूति, चाय पकौड़े और बॉलीवुड के वो सदाबहार गाने। भारतीय सिनेमा और बारिश का तो जैसे जन्म जन्म का नाता है। राज कपूर साहब और नरगिस जी का वो छत वाला सीन याद है, प्यार हुआ इकरार हुआ है।
0: अरे वाह, तुमने तो सीधे उस दौर की याद दिला दी सिर्फ इतनी सी लाइन गुनगुना के। दिल की जहां ब्लैक एंड व्हाइट

0: स्क्रीन पर भी बारिश के रंग बिखर जाते हैं। सच कहें तो बॉलीवुड ने हमें बारिश को जीना सिखाया है काजल, चाहे वो किशोर दा का रूप तेरा मस्ताना हो या फिर लता जी की आवाज में हाय हाय ये मजबूरी।
1: और सिर्फ पुराना दौर ही क्यों अनुभूति, आज का हमारा युवा भी तो बारिश में आमिर खान की तरह घनन घनन गाकर बादलों का स्वागत करता है और जब झूमने का मन हो तो चक दुम दुम पर थिरकता है।
0: बिल्कुल, बॉलीवुड के गानों ने बारिश को कभी मोहब्बत का प्रतीक बनाया तो कभी जादू का। तो चलिए श्रोताओं, इसी फिल्मी बारिश में थोड़ा और भीग लेते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: दोस्तों कहते हैं कि बारिश हर किसी को अच्छी लगती है, पर मुझे ये लगता है कि ये बात शायद उन लोगों ने कही होगी जिन्हें सुबह सुबह उठकर ऑफिस नहीं जाना पड़ता है।
1: छुट्टी के दिन वही बारिश कविता लगती है और सोमवार की सुबह यानी मंडे मॉर्निंग वही बारिश एक्शन फिल्म की तरह उसका क्लाइमैक्स लगती है। घर से निकलो तो लगता है आज दफ्तर नहीं कोई मिशन पूरा करने हम जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने अनुभूति। और सबसे पहली चुनौती होती है रास्ते का कीचड़। बड़ी सावधानी से कदम रखिए और तभी पीछे से एक गाड़ी आके छपाक, पूरा कीचड़ आपके कपड़ों पर। और उस पर मन तो करता है कि गाड़ी वाले को रोक कर बस इतना पूछ ले, भाई साहब आप पानी आपने जो ये पानी उड़ाया है या फिर याद छोड़ कर जा रहे हैं आप अपनी।
1: और अगर घर से निकलते समय लगे कि अरे बादल तो बस ऐसे ही हैं, छाता ले जाने की क्या जरूरत, बस समझ लीजिए मौसम ने आपकी बात सुन ली है। 5 मिनट बाद ऐसी बारिश शुरू होती है कि पेड़ भी कम पड़ जाएं और दुकान की टीन की छत भी।
0: और फिर शुरू होता है वो मशहूर डायलॉग, बस 5 मिनट रुक जाती ये बारिश तो कितना बढ़िया होता। लेकिन बारिश और 5 मिनट का रिश्ता शायद आज तक जुड़ नहीं पाया है।
1: और अब बात करते हैं हमारे सार्वजनिक परिवहन की। बस स्टॉप पर खड़े खड़े ऐसा लगता है मानो पहले हम भीगेंगे फिर बस आएगी, और अगर बस आ भी जाए तो उसमें जगह मिले ये किसे पता।
0: बिल्कुल, ये किसी बोनस से कम नहीं है। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बीच भी एक बात तो माननी पड़ेगी, ऑफिस पहुंचते ही जब कोई कलीग आपसे ये कहता है कि अरे आप भी बारिश से जूझ कर आए हैं, तो लगता है कि आज की दोस्ती का सबसे मजबूत विषय यही है।
1: सच, बारिश हमें परेशान जरूर करती है लेकिन यही मौसम अजनबियों को भी एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर देता है और सफर की छोटी छोटी कहानियां बना देता है।
0: चलते चलते दो पंक्तियां, बारिश ने राहें मुश्किल जरूर की हैं पर हर बूंद को जीना थोड़ा और दिलचस्प भी किया है।
1: बिल्कुल, तो याद रखिए अगर आज ऑफिस जाते हुए कीचड़ अगर आप उड़ा रहे हैं तो लेट हुए हो या छाता घर पर रह गया हो, मुस्कुरा जरूर दीजिए क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं बारिश को एंजॉय करना तो जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी बात पे लीजिए सुनिए ये गीत।

0: वैसे काजल, घर में बैठकर चाय पीना और गाने सुनना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन इस मौसम में असली मजा तो बाहर निकलने में है। तो हमारा अब जो हम बातचीत करने वाले हैं वो घूमने फिरने पर कर लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और घूमना फिरना यानी कि अब वैंडलिस्ट की बात होगी। सच में अनुभूति, इस मौसम में घर के अंदर पैर टिकते ही नहीं है, मन करता है बैग उठाएं और निकल पड़ें किसी हसीन वादी की सैर पर।
0: और जब बात घूमने फिरने की हो तो हमारे भारत में बारिश के दौरान जन्नत जैसी जगहें मौजूद हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स की वो धुंध से ढकी पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर, लोनावला, या फिर दक्षिण में मुन्नार के वो खूबसूरत चाय के बगान।
1: और अगर किसी को बिल्कुल अलग अनुभव चाहिए तो वो मेघालय के चेरापुंजी और मावसिन राम, जहाँ बादलों के बीच चलने का एहसास होता है, वहाँ जा सकते हैं। राजस्थान का उदयपुर भी इस मौसम में झीलों की नगरी बनकर और निखर जाता है।
0: क्या बात है, तुमने तो यहीं बैठे बैठे ऐसा लगता है कि कुछ चुनिंदा स्पॉट्स बता दिए हैं जो हमारे श्रोता अगर घूमने फिरने का इस मौसम में हाल फिलहाल में प्लान बना रहे हैं तो वो जा सकते हैं। और हमारे जो युवा दोस्त हैं वो इस समय कॉलेज या अपने ऑफिस से घर लौट रहे हैं, उन्हें भी हम यही कहेंगे कि वीकेंड आ रहा है दोस्तों, तो अपना ट्रिप प्लान ज़रूर कीजिए, पर ट्रिप प्लान करने के साथ साथ सावधानियाँ भी रखें और सेहत का ध्यान भी, है ना काजल?
1: बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी, ये बात कहना बहुत ज़रूरी था अनुभूति। और हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि बारिश में सड़क किनारे मिलने वाली हर चीज़ जितनी लजीज लग रही होती है उतनी सुरक्षित हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए जहाँ तक हो सके साफ़ सुथरी और ताज़ी चीज़ें ही खाइए,
0: क्योंकि बारिश जितनी सुहानी होती है उतनी ही आपकी सेहत भी ज़रूरी होती है और उसका ख्याल रखना भी, क्योंकि यही मौसम सर्दी, जुकाम, वायरल और पेट से जुड़ी कई सारी परेशानियाँ आपके लिए लेकर आ सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि मौसम का असली मज़ा तभी है जब आपका मन भी भीगे और तन भी स्वस्थ रहे।
0: और किसी ने क्या खूब कहा है कि बारिश की हर बूंद में खुशियों

0: दोस्तों, आज के इस युवाणी कार्यक्रम में हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो बॉलीवुड की यादें ताज़ा की हैं, प्रेम के एहसास को जिया है और खूबसूरत वादियों की सैर की है, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ बारिश से संबंधित और भी जो भी आप बातें करना चाहते हैं वो आप हमसे ज़रूर कीजिएगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज के प्रश्नों।

0: उत्तर बताने का।
1: हमारा पहला प्रश्न था कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसूनी हवाओं के जरिए होती है, जिसका उत्तर है दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर है 1875 यानी कि 1875 में।
1: इसी के साथ दीजिए इजाजत अनुभूति
0: और आपकी रेडियो दोस्त काजल को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गीत सुनिए कमाल खान की आवाज में। बोल समीर के हैं, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: परदेस फिल्म का गीत सुनिए कुमार सानू की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
3: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल,
3: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी,
3: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
3: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
2: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
3: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमरेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा?
2: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
3: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
2: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
3: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
3: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
3: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
2: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
3: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना।

0: आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे।

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो, इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
1: जी,
0: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
1: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ाइयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
0: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
1: जी पिताजी।
0: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
1: ठीक है।
0: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
1: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
0: अरे प्रवाहन।
2: जी पिताजी।
0: तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
2: वो पिताजी,
0: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
2: जी वो
0: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
2: पिताजी, हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
3: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
1: हाँ हाँ पिताजी।
2: और पिताजी, हम तो अपने साथ हरिराज और शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
3: हाँ।
2: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
0: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रु मर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
2: जी,
0: उन्हें कल हस्तिनापुर जाना है।
3: पर क्यों पिताजी?
0: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहां रथों की दौड़ भी होगी।
3: पिताजी, हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
1: जी पिताजी,
3: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
0: बहुत अच्छा।
3: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
2: पिताजी, देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
3: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
0: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो, तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
3: जी पिताजी।
0: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
3: अच्छा पिताजी।
0: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
2: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
4: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
0: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
4: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
2: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष ही तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
5: और क्या,
2: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
4: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
2: अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
0: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
2: जी पिताजी।
0: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
2: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे?
3: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
2: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेश से भी रथ आ रहे हैं।
3: हाँ।
2: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
0: हाँ ये तो है।
6: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
7: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: अरे सुनो सुनो कुछ कह रहे
1: हैं। इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
2: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
1: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
2: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता

0: में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
1: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
0: अरे वो देखो वो देखो,
1: क्या रथ
0: की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
1: क्या बाकी और सजीले सवार है। वाह वाह
0: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
2: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
1: चलो चलो।
4: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
5: ये पकड़ा।

0: अरे ये कोलाहल कैसा है?
1: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
0: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
2: अरे चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दे, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
0: अरे रुको तो सही, अरे देखो देखो
2: क्या
0: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
2: हाँ, हाँ। अच्छा हुआ संकट टल गया, अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
0: हाँ।
2: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
0: हाँ।
2: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
3: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: और सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में पेश है भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई ये गजल।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: लीजिए सुनिए एक और गजल, कलाकार हैं भूपेन सिंह मैताली सिंह।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे भूपेन सिंह और मिताली सिंह की गायी गजलें। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में पेश है आनंदीलाल भावेल के गाए भीली लोकगीत।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार दिनांक 10 जुलाई यानी कल सुबह 11:32 से 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम, रहें सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 10 जुलाई यानी कल सुबह 11:32 से 12 बजे तक FM 101.6 MHz विविध भारती चैनल पर प्रसारित

किया जाएगा। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगी इंस्पेक्टर सरिता सिंह और सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह, स्टेट साइबर सेल इंदौर। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, शुक्रवार दिनांक 10 जुलाई यानी कल सुबह 11:32 से 12 बजे तक विविध भारती चैनल पर। तो आप भी फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां विशेषज्ञ इंस्पेक्टर सरिता सिंह और सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह स्टेट साइबर से इंदौर से जान सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। लीजिए सुनिए एक और भीली लोकगीत। कलाकार हैं आनंदीलाल भावेल।

लोक संगीत में आज आप सुन रहे हैं आनंदीलाल भावेल के गाए भीली लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है एक और भीली लोकगीत। कलाकार हैं आनंदीलाल भावेल।

0: लोक संगीत में आज आप सुन रहे थे आनंदीलाल भावेल के गाए भीली लोकगीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7 बजने को हैं समाचार, कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
2: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

0: पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रूपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने अमरीका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमरीकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमरीकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:05 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए अब आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 से कार्यक्रम खेती गृहस्थी में शक्तिवेद की वार्ता। 12 साल में खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्ध कोशिश होगी। 8:15 से सुनिएगा मेरा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत 9:15 से सुने जा सकते हैं। 9:30 से श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन प्रसारित किया जाएगा। 10:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा पंडित वसंत राव देशपांडे के गाय राग जे जे वंती का।

तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको हमारे कल अर्थात शुक्रवार 10 जुलाई को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल सुबह 6:05 से सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, 6:35 से खेती की बातें में बरसाती धनिये की उन्नत खेती के बारे में बताया जाएगा। श्री रामचरितमानस गान का पाठ होगा 6:40 से। 7:20 से वक्त रहेगा कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा का, प्रस्तुति है मुकाम सिंह चौहान की। 7:35 से सदाबहार फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिएगा कार्यक्रम सुनहरे पल में। 8:30 से सुनिएगा परिचर्चा। 9 से लोक संगीत में विंध्यवासिनी देवी के गाए लोकगीत होंगे। सुगम संगीत में 9:30 से आप सुन सकते हैं लियाकत हुसैन की गायी गजलें। 9:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा हरिराम गोस्वामी के एकल पखावज वादन का, ताल होगा रुद्र ताल। 10:05 से सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11 से फोन करें गीत सुने, 12 से फिल्म संगीत, 12:30 से संग्रहालय से, 1 से महिला कार्यक्रम, 1:30 से लोक संगीत, 1:45 से सुगम संगीत, 2 से फिल्म संगीत और 2:30 से चित्रपट संगीत। तो ये थे हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। हमारी कल की सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी रोज की तरह युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के साथ संध्या 5 से। 5:45 से सुनिएगा फिल्म संगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा 6 से। 6:30 से सुगम संगीत में सुनिएगा लियाकत हुसैन की गाई गजलें। 6:45 से लोक संगीत में आप सुन सकते हैं उषा व्यास के गाए लोकगीत। 7:20 से कार्यक्रम खेती गृहस्थी में डॉक्टर दीपक हरी से भेंटवार्ता होगी। विषय है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु एग्री वोल्टाइक प्रणाली। 8:15 से सुनिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 से चित्रगीत सुने जा सकते हैं। 9:30 से श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन प्रसारित किया जाएगा। 10:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा कल्याणी कानड़े के गाए राग भाग्यश्री का। तो ये थे हमारे कल अर्थात शुक्रवार 10 जुलाई को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में हाईसीज मत्स्य दोहन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शाजापुर जिले के किसान सम्मेलन में शिरकत की और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रतलाम पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में यह उनकी तीसरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। प्रधानमंत्री ने भारत ऑस्ट्रेलिया के साझा खेल और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी जिक्र किया।
1: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर में हाईसीज मत्स्य दोहन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज भी लॉन्च किया। उपराष्ट्रपति ने देशभर के 10 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और मछुआरों को लेटर ऑफ ऑथराइजेशन सौंपे। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत की समुद्री यात्रा में नए अध्याय की शुरूआत है। इससे मछुआरे गहरे समुद्र के संसाधनों का सतत उपयोग कर सकेंगे। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। उन्होंने युवाओं से मत्स्य पालन को आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील में आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 4 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
2: एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान। मुझे गर्व है, इसी महीने कोशिश करेंगे विधानसभा में एक समान कानून मध्य प्रदेश में लग के रहेगा। मध्य प्रदेश में
0: प्रदेश में दतिया विधानसभा उप निर्वाचन के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक विजय भारती और पुलिस प्रेक्षक के त्यागराजन ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का जायजा लिया। प्रेक्षकों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम और गणना कक्ष का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान दतिया में फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम को सी विजिल और ईएसएमएस ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। इस ऐप के जरिए आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने बल्लभ भवन में मुलाकात की। बैठक में शिशु और मातृ मृत्यु दर घटाने, एनीमिया नियंत्रण और बाल विवाह रोकथाम पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी विभागों में समन्वय जरूरी है। उन्होंने यूनिसेफ से मास्टर ट्रेनर्स की क्षमता निर्माण में सहयोग का आग्रह किया। यूनिसेफ प्रतिनिधि जैस्पर मिलर ने राज्य सरकार के सुमन रोडमैप और मदर एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट्स की पहल की प्रशंसा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

की प्रक्रिया शुरू हुई है। जेल मुख्यालय ने विभिन्न संवर्गों में पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। इनमें सहायक ग्रेड 1, स्टेनो टाइपिस्ट, लेखपाल और उप अधीक्षक जैसे पद शामिल हैं। जनसंपर्क अधिकारी राजेश ताहिमा ने बताया कि आने वाले समय में अन्य प्राप्त पात्र कर्मचारियों के आदेश भी चरणबद्ध रूप से जारी होंगे। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में कल विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश सगर के नेतृत्व में हुआ। गोंडवाना एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनों में सघन जांच की गई। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले 66 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रेलवे ने जुर्माने के रूप में करीब 61,000 रूपये वसूले। भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत कंट्रोल कमांड रूम बनाने को कहा है। कलेक्टर ने आज सांदीपनी विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा की। उमरिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है। परिवार अनूपपुर से चित्रकूट जा रहा था। घायल युवती को इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इस साल अब तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हो चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। सिंगरौली कलेक्टर की पहल पर अदानी फाउंडेशन बधौरा ने महिलाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिलाई मशीनें दी हैं जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वितरण केंद्र बैतूल द्वारा 10 जुलाई को संपर्क अभियान के तहत कोलगांव में शिविर आयोजित किया जाएगा। देवास के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आज मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में लगातार बारिश के बीच कई निचले इलाकों वाले गांवों में किसानों की फसल पर जलभराव का संकट खड़ा हो गया है। इन गांवों में सोयाबीन की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज कोलारस में मृदा परीक्षण केंद्र और एसडीओ कृषि कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अशोकनगर जिले में आगामी समय में विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के दौरान शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। खंडवा जिले की बोरगांव चौकी पुलिस ने गौवंश तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगर मालवा कलेक्टर ने आज जिले के भ्रमण के दौरान ग्राम कबराखेड़ी में किसान प्रकाश नांगे के खेत में तरबूज के बाद लगाई गई लौकी की फसल का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सूर्य।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बेड़ना का प्रियंका की राम राम। भाई बेड़ना, यो तो अपन सब जाना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की लगभग आधी आबादी अपनी आजीविका स्वरूप खेती पर निर्भर है। और अपने भारतीय कृषि की सबसे बड़ी चुनौती नाम से एक सिंचाई का लिए पर्याप्त और समय पर बिजली की उपलब्धता है। ग्रामीण क्षेत्र नामा बिजली की कटौती और महंगा डीजल का खर्च नाना हमेशा किसान मनक के कमर तोड़ दी है। और इन्हीं गंभीर समस्या को स्थायी समाधान निकालना स्वरूप भाई बेड़ना और सांतज पर्यावरण का स्वच्छ रखना का स्वरूप केंद्र सरकार ने एक कदम उठायो, जिका अपन प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि PM कुसुम योजना को नाम से अपन कर जाना। इन योजना को मुख्य उद्देश्य भारतीय किसान का ऊर्जा का क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनानो, साथ सिंचाई की लागत का कम करनो और खेती का डीजल व पारंपरिक बिजली का संकट से मुक्त करनो है। भाई बेड़ना, इन योजना का तहत सरकार हमारा किसान भाई बेड़ना का अपना खेत पर सोलर पंप, सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप लगाना स्वरूप भारी सब्सिडी दे रही है। अब इको कई मतलब भारी सब्सिडी यानी तो इकमा अपना मुफ्त बिजली, डीजल से मुक्ति और बंजर जमीन से कमाई भी है। यानी अगर तमाकन 80 जमीन है जहाँ की जब खेती नहीं हुई रही है, वहाँ तम सोलर प्लांट लगन हर महीना घर बैठा कमाई करी सकता है। और अब सबसे जरूरी बात यह कि मन में अब यो सवाल आए कि इकमा खर्चों कितो होगा, तो भाई बेड़ना इकमा अपना शासन की कितनी मदद मिलेगी, ये सब सवाल ना अपना मन में आवश्य है। तो इका सरु भाई बेड़ना, सोलर पंप की कुल लागत को 60% तक को हिस्सो शासन की तरफ से हमें अपना मिला, जिकमें कि 30% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार की तरफ से, और बाकी बचा खर्चा में से 30% तक को अपना बैंक से लोन मिली जाए। और यानी कि अब जो अपना शुरुआत में अपना जेब से जो देनो है पैसों, लगभग अपना 10-20% तक ही लगानो रहे। अब फिर एक माँ अपन आवेदन कैसे करा, तो इका शुरू तम अपना राज्य की ऊर्जा विकास एजेंसी या फिर बिजली विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है ऊपर अपना जानो पड़ेगो और वहाँ से अपन आवेदन कर ही सकता है। या फिर तम अपनो जो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर है या फिर ई मित्र पर जैन तम इको ऑनलाइन फॉर्म भी भरी सकता हो। पर ध्यान रहे कि कोई भी फर्जी वेबसाइट का झांसा में नहीं आनो है, केवल सरकारी पोर्टल का ही अपना उपयोग करना है। तो किसान भाई बेड़ना, जब धूप से फसल भी लही सकती है तो उन्हीं धूप से बिजली भी बनी सकती है। तो फिर देर की नहीं बात की, आज ही तम PM किसी कुसुम योजना का बारा में और अधिक अगर जानकारी चाहिए तो का जुटानो है और अपना खेत का सोलर की शक्ति से चमकानो है। वो भी चमका गो और साथ जब अपन सुनांगा एक लोकगीत भी जिका गायो है भाई राम अवतार अखंड और साथी नाना। तो सुना अपन यो लोकगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भाई बंडा संदेश का पहला अपन भाई राम अवतार अखंड और साथीना को गायो प्यारो सो लोकगीत सुनियो। और जब भी आसमान में दूर देश काला काला बादला ना आए, उमड़ी घुमड़ी ना आए, तो हमारा किसान भाई बहना का चेहरा खिली जाए, क्योंकि इन्हें ऊपर ही निर्भर रही बारिश पर कि भाई हमारी फसल कैसी रहेगी। क्योंकि भाई बहना ये बादल ना सिर्फ पानी नहीं लाए, वी हमारा घर की खुशहाली, बच्चा ना की पढ़ाई और खेत की तरक्की लेना है। और हमारो पूरो जीवन, हमारी पूरी खेती ना बादल ना पर टिकी रही है भाई बहना। पर अब वक्त भी बदली रहे है और वक्त का साथ हमारी खेती की तकनीक ना भी बदली रही है। पहला हम सिर्फ आसमान की तरफ टकटकी लगाई देखता था कि कद बारिश का बादल आएगा और कब हमारा खेत जो सूखा है उनकी प्यास बुझेगी। पर आज हमारा किसान भाई बिरना आत्मनिर्भर है। अब अगर कदी बादल आना में थोड़ी देर भी जाए तो हमारी खेत की फसल ना नहीं सूखेगी, क्योंकि अब हमारा साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना और हमारा खेत में चमकेगी सौर ऊर्जा यानी सोलर की शक्ति। और अब हम आसमान में सूरज चमकेगो तो खेत में सोलर पंप दौड़ेगा। दूर देश से आने वाला बादल ना जब बरसेगा तो सोनो भी उपजेगो, और जब धूप खिलेगी तब उन्हीं धूप से हम हमारा खेत ना में पानी भी दांगा, और साथ ही बिजली का माध्यम से हमारा घर में लक्ष्मी भी आओगी। यानी अब हमारा जो किसान भाई बिरना ही भी बादल का भरोसा बटने वाला अन्नदाता ही नहीं, बल्कि अब सूरज की शक्ति से तिजोरी भरने वाला ऊर्जा दाता भी बनी सकेगा। तो भाई बहना खेती की जब बात अपन करीज रहा है तो कार्यक्रम में अपन एक वार्ता सुना जिसमें 12 साल में खेती का लाभकारी बनाने का लिए सरकार की प्रतिबद्ध कोशिश ना कहीं कहीं रही, एक बारा में अपना विस्तार से जानकारी देगी शक्ति वैद्य। तो सुना अपन यह वार्ता।
2: नमस्कार, मैं शक्ति वैद्य। 12 सालों में खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्ध कोशिशें, इस विषय पर मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। भारत सरकार ने बीते 12 सालों में खेती को लाभकारी बनाने के लिए जी तोड़ प्रयास किए हैं। इसे कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। किसानों की माली हालत सुधारने के लिए और खेती में नई उम्मीद जगाने की दिशा में सरकार की जमीनी कोशिशों से आज हालात बदल रहे हैं। केंद्र सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी नजर आती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, सिंचाई क्षमता में विस्तार, तकनीक के भरपूर उपयोग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए किसानों में खेती के प्रति एक नई आशा का संचार हुआ है। इससे न केवल अन्नदाता की आय बढ़ी है, खेती को लाभकारी बनाने के साथ साथ गांवों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने की दिशा के लिए केंद्र सरकार के दूरगामी निर्णयों से देश के करोड़ों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सका है। किसान सशक्त होगा तभी विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 12 सालों में किसान कल्याण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता और अभूतपूर्व इच्छा शक्ति के साथ लगातार बेहद काम हुए हैं। कृषि को देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। अब किसान कल्याण केवल वादा या नारा नहीं है, बल्कि जमीन पर दिखने वाला बदलाव है जिसे साफ साफ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए लगभग 4 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि देश के किसानों के बैंक खातों में सीधे पहुंची है। इससे किसानों का सम्मान, खेती के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव, आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि बढ़ी है। वही यह देश की अन्य सुरक्षा और पोषण से भी जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर अपना संकल्प दोहराया कि किसानों का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने संस्कृत के एक सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि कृषि केवल जीविका का साधन नहीं है, हमारे समाज और राष्ट्र के पोषण का मूल आधार है। हमारे किसान भाई बहनों का पसीना जब मिट्टी को सींचता है तो अन्न बनकर देशवासियों के जीवन को संबल देता है। इस तरह खेती और फसल ही मनुष्य के जीवन के आधार है। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब तक 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि देश भर के किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। लगभग 24,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में देश के किसानों को प्रदान किए गए हैं। देश में 26 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। इसी तरह 4 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभ मिला है। 2024 से 2025 के

साध्य जलवायु अनुकूल फसलों के लगभग 3000 किस्में जारी की गई। कृषि क्षेत्र में अवसंरचना के लिए केंद्र सरकार ने 84,200 करोड़ की राशि मंजूर की गई। इसमें 1.33 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इधर लगभग 17 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन को परंपरागत कृषि विकास योजना में सम्मिलित किया गया है। 11 करोड़ किसानों के लिए एग्री स्टेक फार्मर आईडी और पर ड्रॉप मोर ड्रॉप के तहत 109 लाख हेक्टेयर खेतों को कवर किया गया है। खेतों में मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए जन भागीदारी आधारित राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान में देश भर में 17,834 कार्यक्रमों के माध्यम से 9,42,400 से अधिक किसानों तक यह संदेश पहुंचाया गया कि स्वस्थ मिट्टी खेती के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक मजबूत और अनिवार्य कदम साबित होगा। इसमें 3,698 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को संतुलित उर्वरक उपयोग तथा वैज्ञानिक खेती के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देश के पात्र किसानों को 6,000 रुपए की राशि 3 समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। इससे छोटे और मझोले किसानों को कृषि कार्य में सहायता मिलती है। वही उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अब साहूकारों के दरवाजे पर चक्कर नहीं काटना पड़ता। इससे पहले छोटे काम के लिए भी उन्हें कर्ज लेना पड़ता था और इस तरह वे लंबे समय तक कर्ज की दलदल में धंसते चले जाते थे। देश के करोड़ों किसानों के लिए यह सम्मान निधि एक बड़ी आर्थिक मदद साबित हो रही है। छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़ी बीज, खाद, सिंचाई और अन्य जरूरी संसाधनों की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता की इस योजना का आरंभ 2019 में किया गया था। 20 जून 2026 को ही इसकी 23वीं किश्त जारी की गई, जिसमें 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रति किसान 2,000 रुपए डाले गए। खरीफ की फसल की तैयारी के समय काफी उपयोगी होने से इस राशि के मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। कई किसानों ने इस राशि का उपयोग बीज खरीदने से लेकर खाद, खेत तैयार करने तथा अन्य जरूरी कामों में किया है। प्रधानमंत्री ने सभी किसानों को इसके लिए शुभकामनाएं देते हुए मोबाइल पर SMS संदेश दिया कि आशा है इससे आपको खेती की जरूरतों में मदद मिलेगी। यह संदेश पाकर किसान खुशी से दमक उठे कि उन्हें पहली बार किसी PM ने शुभकामनाएं देते हुए सीधे बात की है। इससे उन्हें समाज में सम्मान की अनुभूति हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश की सबसे लोकप्रिय किसान कल्याण योजनाओं में गिनी जाने लगी है। यदि किसी किसान को 23वीं किश्त की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो वह इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट PM किसान पोर्टल के होम पेज पर नो योर स्टेटस में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बैंक खाते और मोबाइल पर आए संदेशों से भी जांच कर सकते हैं। कई बार EKYC या खाते में कोई त्रुटि होने से भी भुगतान रुक सकता है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को कम ब्याज पर बैंकों से सीधे ऋण मिल रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने भी किसानों में खेती के प्रति सुरक्षा के भरोसे का भाव जगाया है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों से फसल के खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता और बीमा कवर करती है। इस योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि के विस्तृत विवरण के लिए भारत सरकार की आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल से जानकारी ले सकते हैं। PM कुसुम योजना के माध्यम से किसानों और को सौर ऊर्जा की सुविधा मिल रही है। इसे किसानों का सिंचाई आदि के लिए बिजली और डीजल पर होने वाला काफी बड़ा खर्च बच पाना संभव हुआ है और खेती की लागत का खर्च कम हुआ है। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले नुकसान से खेतों की मिट्टी की सेहत सुधारने, रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन दिनों 1 जून 2026 से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ आंदोलन पूरे देश में जोशों खरोश के साथ चल रहा है। अब धीरे धीरे यह एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। किसानों से अपने खेतों की मिट्टी परीक्षण की जांच में जरूरी उर्वरकों के इस्तेमाल करने और उनमें भी

0: सड़कों के संतुलित उपयोग का आग्रह किया जा रहा है। इसमें किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जैव उर्वरक, हरित खाद और जल संरक्षण तकनीकों पर भी जानकारी दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि कृषि क्षेत्र में आए तकनीकी प्रयोग के साथ प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ जाती है, उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है और इससे पैदा होने वाली फसल भी अधिक पौष्टिक तथा स्वास्थ्यप्रद होती है। खेतों की उत्पादन क्षमता बढ़ने और खेती की लागत घटने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है। इस अभियान का मूल मंत्र है, मिट्टी बचेगी तो खेत बचेंगे, खेत बचेंगे तो किसान बचेगा। खेत बचाओ मुहिम में मिट्टी की सेहत की सुरक्षा के लिए खेतों की मिट्टी की जाँच, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग सहित जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को उनके खेत की जरूरत के अनुसार सही मात्रा में खाद डालने और नकली कीटनाशकों की पहचान करने की जानकारी दी जा रही है। किसानों को रासायनिक उर्वरकों से दूर रहकर प्राकृतिक और जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। पात्र किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसमें कृषि वैज्ञानिक अधिकारी तथा प्रगतिशील किसान सीधे गांव की चौपाल पर पहुंचकर ग्रामीण किसानों से बात करते हैं। किसानों से संवाद होने से उनकी जिज्ञासाएं शांत होने के साथ साथ ही वे आसानी से इन बातों को समझ पाते हैं। सरकार के इन सब दूरदर्शी प्रयासों का ही सुपरिणाम रहा कि रवि के इस सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद रिकॉर्ड तोड़ 17% बढ़कर 2026-27 में 3.5 करोड़ टन के लक्ष्य को पार कर गई है। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खूब खरीदी की गई। इससे किसानों को उचित मूल्य मिल सका, उन्हें बाजार में कम दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं हुई और एक तरफ जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का फायदा मिला, वही देश के अन्न भंडार सुरक्षित होने से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। सरकार ने लक्ष्य तय किया था 3.45 करोड़ टन का, लेकिन अच्छी पैदावार होने से जब खेतों से गेहूं निकला तो इस बड़े लक्ष्य को भी पार कर गया। यह कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत है। ग्रामीण महिलाएं भी अब घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आधुनिक तकनीक के सहारे कृषि क्षेत्र में नायाब मिसाल रच रही हैं। कई गांवों में सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना का लाभ लेकर महिलाएं न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण का प्रेरक उदाहरण भी बन रही हैं। इन्हें निःशुल्क ड्रोन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के बाद गाँव में कृषि कार्य के लिए ड्रोन भी निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। अब लोग उन्हें ड्रोन दीदी कहकर पुकारने लगे हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया है। इसके साथ ही पशुपालन, दूध और मछली पालन आदि गतिविधियों पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि इससे जुड़कर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अन्नदाताओं के सुनहरे भविष्य और खेती को लाभकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश में जुटी है। इन ईमानदार कोशिशों से कृषि क्षेत्र को अब नई पहचान मिल रही है। अन्नदाता की समृद्धि ही नए भारत की शान है। उम्मीद है कि सशक्त किसान आत्मनिर्भर भारत का मंत्र ग्राम्य जीवन को नई दिशा दे सकेगा। धन्यवाद।
1: भाई वेणा अभी अपन वार्ता सुनी, जीको विषय तो 12 साल में खेती का लाभकारी बनाना शुरू सरकार की प्रतिबद्ध कोशिश ना, और वार्ताकार थी शक्ति वैद्य। भाई बेणा वो बखत अलग तो गुजरे हुई जब खेती का केवल पेट भरने को साधन मानो जाते थे, पर अब वर्तमान दौर में उका साथ साथ व्यापारिक खेती को समय है, साथ मुनाफा की खेती को समय है। भाई बिरना आज हमारा किसान भाई बिरना का घर में खुशहाली तभी आ रही जब भी मेहनत करने का साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहा है, और खुशहाली को पहलो मंत्र यो है कि भाई हमारा जो किसान भाई बिरना जो जागरूक है वी अब अंधाधुंध खाद डालने से बची रहा है। पहला भी मिट्टी की जांच कर रहा है, जिससे कि अपना मालूम पड़े कि भाई जमीन में किना चीज की जरूरत है और किना तत्व की जरूरत नहीं है। इससे अपनी लागत भी घटा और पैदावार भी बढ़ा। साथ साथ कम पानी और विपरीत मौसम में भी बम्पर पैदावार देने वाला सरकारी प्रमाणित बीजना का इस्तेमाल करना से एक अच्छो रास्ता बनी रहे है, जिससे कि हमारा किसान भाई बहन का अच्छी आय भी हुई रही है। और चूंकि अब बारिश को

डैम भी है। ऐसा में हमारा बूंद बूंद पानी का बचन अपना कम लागत में पूरी फसल का लहलहाना की या तकनीक भी अपना पानी से बचे रही है, जिका कि अपन का ड्रिप या फिर स्प्रिंकलर सिंचाई या जिका अपन टपक सिंचाई का नाम से भी जाना। तो भाई बेना इन्हीं चीज ना को अपन उकर उपयोग करांगा तो अपना निश्चित रूप से लागत में भी कमी आएगी और अपना आय भी अच्छी होगी। और खुशहाली तो तब और दुगनी हुई जाए जब कमाई का रास्ता एक नहीं भाई बेना चार हो जाए। हमारा प्रगतिशील किसान भाई बेना आप केवल सोयाबीन या फिर गेहूँ का भरोसा नहीं बैठा है, उनने साथ साथ पशुपालन और डेयरी जिकमा की भी रोजाना की नगद आमदनी भी ले और साथ साथ घर का जो रोज का खर्चा है उनका आसानी से संभाल ही ले। बागवानी और सब्जी की खेती कर जिकमा की अनाज का मुकाबला फल और सब्जी ना बाजार में कम समय में ज़्यादा मुनाफा दे। मल्चिंग जैसी तकनीक ना का अपने इन किसान भाई बिना लाखों कमाई रहा है और साथ साथ मधुमक्खी पालन हो या कड़कनाथ मुर्गी पालन हो इका तरीका से छोटा स्तर पर ही शुरुआत करना का साथ ही इना व्यवसाय से हमारा किसान भाई बिना आज बहुत अच्छी आमदनी कमाई रहा है। और जैसा कि अपन ने सौर ऊर्जा की भी बात करी थी शुरुआत में, प्रधानमंत्री कुसुम योजना को भी लाभ लेन नारा किसान भाई बहना जिनका पहला शिकायत रहती थी कि भाई हमारी जो जमीन है वह बंजर है, अब ऊपर कसा हम खेती करा, तो उको भी अब सदुपयोग हुई रही, यानी कि उससे भी धूप को उपयोग करें बिजली बनें हर महीना की कमाई पक्की करी रहा है। तो भाई बेना ऐसा तरीका ना तो नरा है, बस थोड़ो सा अपना समझदारी से जागरूकता का साथ अपना काम करना है। और साथ ज आज का टाइम अपन देख ही रहा है कि जब अपन ने यो भी सुने कि भाई संगठन में शक्ति है, तो हमारा जो किसान भाई बेना है गांव गांव में किसान उत्पादक संगठन बनी रहा है जिका अपन FPO भी का, जिससे कि 10-20 किसान भाई बहना एक साथ मिलीन अपनी फसल बाजार में सीधा बेची रहा है और जिससे कि जो बिचौलिया ना गायब हो जाए तो जो मुनाफा है वो पूरो को पूरो किसान की जेब में आई है। तो यही तो है असली आत्मनिर्भरता और यो है खुशहाली को रंग भी। तो बात अपन अभी और भी करांगा, अब मन करी रहे कि कार्यक्रम में अपन एक लोकगीत और सुनीला जिका गाया है भाई रतन दास बैरागी और साथी नाना। तो सुना अपन यो लोकगीत।

भाई बिरना, अभी अपन ना भाई रतन दास बैरागी और साथी ना को गायो यो प्यारो सो लोक भजन सुनियो, और अब आज का मंडी भाव का बारा में भी अपन जानी ला। तो भाई बिरना, कृषि उपज मंडी समिति संयोगितागंज प्रांगण इंदौर में आज चना को न्यूनतम भाव रियो 4,000 रुपया प्रति कुंटल और अधिकतम भाव रियो 7,430 रुपया प्रति कुंटल। मटर को भाव रियो 2,105 सलीन 3,895 रुपया प्रति कुंटल। अन्य गऊ को न्यूनतम भाव रियो 2,000 रुपया प्रति कुंटल और अधिकतम भाव रियो 3,051 रुपया प्रति कुंटल। मिर्ची को भाव रियो 14,790 रुपया सल एक ही भाव रियो को 14,790 रुपया प्रति कुंटल। और सरसों को भी एकज भाव रियो 6,550 रुपया प्रति कुंटल। और तिल्ली को भाव रियो 8,300 सलीन 11,225 रुपया प्रति क्विंटल। सोयाबीन को भाव रियो 4,600 सलीन 7,100 रुपया प्रति क्विंटल। अना मक्का को भाव रियो 2,091 सलीन 2,138 रुपया प्रति क्विंटल। धनिया को भाव रियो 14,210 सलीन 14,490 रुपया प्रति क्विंटल। अना डालर चना को भाव रियो 5,700 रुपया न्यूनतम और अधिकतम रियो 8,990 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को भाव रियो 1,954 रुपया सलीन 6,900 रुपया प्रति क्विंटल। मसूर को भाव रियो 2,105 रुपया प्रति क्विंटल, इको भी एकज भाव रियो। अना मूंग को भाव रियो 4,000 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम और अधिकतम रियो 7,355 रुपया प्रति क्विंटल। अना राजमा को भाव रियो 3,305 सलीन 6,600 रुपया प्रति क्विंटल। भाई बहना, ये तो था अपना आज का मंडी का भाव। और अब मन करी रियो कि कार्यक्रम में अपन एक लोकगीत और सुनी ला। तो सुना अपन भाई ओम प्रकाश सोमानी को गायो यो लोकगीत।

भाई बहना, अभी अपन भाई ओम प्रकाश सोमानी को गायो यो लोकगीत सुनियो, और चलता चलता योज कुआ कि भाई खेतना की मेड़ पर पेड़ जरूर से लगानो है, और पेड़ जो है सिर्फ छाया नहीं दई, ई जो है अपनी तेज हवा ना से हमारी, जब भी तेज हवा रहे तो उससे हमारी फसल की रक्षा कर, मिट्टी का कटाव का रोका, और हमारा पर्यावरण का शुद्ध और स्वच्छ रखा। तो हमारी बात का इका सातज न्याज दू विराम, सब किसान भाई बहना का प्रियंका की राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम सुर्खियों में कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कल अपनी इंडोनेशिया की यात्रा खत्म करी और कल ही वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर अशोक सज्जनहार। अम्बेसडर सज्जनहार, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत धन्यवाद।
3: अम्बेसडर सज्जनहार, बाकी और पहलुओं पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, उसके बीच जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने के बारे में बात की है, तो मौजूदा समय में यानी कि जब हम पश्चिम एशिया में फिर से तनाव देख रहे हैं, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण

0: जी बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा है, जैसे दीक्षा आपने बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है पूरे विश्व में। बहुत ही उथल पुथल की स्थिति है, बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति है। और हमने देखा है, अभी जब से ये फरवरी में युद्ध शुरू हुआ है, तो तब से वहां पर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो वहां से खत्म हो गया है। और जो क्योंकि पूरे विश्व में करीब 20% जो तेल आता है, खुरदरा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, चाहे वो फिर गैस आती हो, एलपीजी, एलएनजी, या फिर और भी उसके जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जिसे कहा जाए फर्टिलाइजर, उर्वरक है, जो कि बहुत ही आवश्यक है फूड सिक्योरिटी के लिए, अलग अलग देशों के लिए, भिन्न देशों के लिए, परंतु पूरे विश्व के लिए। उसके अलावा और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम कहते हैं सल्फर की जरूरत होती है, हीलियम की जरूरत होती है, तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव पदार्थ हैं जो कि जब तेल को रिफाइन किया जाता है तो वो निकलते हैं, तो वो सभी पदार्थ आना बाहर बंद हो गए। और जिससे कि पूरे विश्व को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा फरवरी से लेकर अभी तक, जब तक इसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और फिर हम कल से देख रहे हैं फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। तो इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है सभी देशों के लिए, ऐसे देशों के लिए यकीनन भारत जैसे देश हैं जो कि हम करीब 90% अपनी ऊर्जा बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो दोनों, भारत ने और ऑस्ट्रेलिया ने, इसके ऊपर एक समझौता किया है। अब जो एनर्जी के बारे में अगर बातचीत की जाए आदान प्रदान में, तो हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत मात्रा में कोयला खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, हालांकि हमारे यहाँ से काफी हद तक हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं और रिन्यूएबल्स की तरफ हम जा रहे हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं पेरिस अकॉर्ड में, जो 2030 तक हम कितना रिन्यूएबल्स में हम प्रोडक्शन करेंगे, उससे कहीं ज्यादा हमने ऑलरेडी कर दिया है। हमने अपना जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया, परंतु फिर भी ऑस्ट्रेलिया से चाहे कोयला हो, चाहे एलपीजी हो, काफी मात्रा में हमारे यहाँ आता है। और हमारे यहाँ पर ये सब रिफाइन होकर जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया को हम फिर से भेजते हैं। हमारा सबसे ज्यादा मात्रा में जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है ऑस्ट्रेलिया को, वो इन्हीं का है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोनों देशों के बीच के सहयोग का।
1: तो आगे बढ़ने से पहले, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस मीट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को आसान बनाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर करने के बारे में बातचीत की है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
2: न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, जैसे कि हमने भी प्रधानमंत्री को सुना, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौते 2015 के तहत विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा मानकों के दायरे में भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को संभव बनाने के लिए जरूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। ये आपके नजरिए में, ये आपके समझ से कितना महत्वपूर्ण है?
0: मेरे विचार से ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है दोनों देशों ने उठाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो ये फॉसिल फ्यूल्स से हम नहीं करेंगे, ये हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में इस यूरेनियम का प्रयोग करेंगे। और हमने जो मात्रा रखी है वो जो हम 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी 2047 तक हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अभी तक अगर हम देखें तो मेरे विचार से अभी तक हमारा 8-9 गीगावाट हम प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब हमारे पास और बहुत ज्यादा ऐसा संभव ये कर सकते हैं जो इसको मात्रा को हम और आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, ये हमारा समझौता जो हुआ था वो हुआ था 2014-2015 में, जबकि टोनी एबट थे वहां के प्रधानमंत्री। अब 12 साल गुजर गए हैं, परंतु अभी तक वहां से कोई हमारे पास यूरेनियम ओर नहीं आ पाया है। तीसरी बात,

0: जो ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा जो रिजर्व्स हैं यूरेनियम के वो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया उनको माइन करे, उनको बाहर देशों को उसको एक्सप्लॉयट करे, बाहर देशों को और एक्सपोर्ट करे, निर्यात करे, तो ये दोनों के लिए फायदा होगा। और चौथी बात इसमें ही देखें, ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत अच्छा होगा, तो इसीलिए हम सिविलियन यूजेस के लिए ऊर्जा को पैदा करने के लिए, ऊर्जा को जनरेट करने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये इतने सालों बाद हो रहा है, तो मेरे विचार से ये भी एक विन विन प्रोपोजिशन है, क्योंकि इससे भारत को तो फायदा होगा ही, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और आगे बढ़ पाएंगे, परंतु इससे ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसका अपना वो तो एक जो कमोडिटीज हैं उसको वो माइनिंग में, क्योंकि उसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा वहां पर मिनरल्स हैं और यूरेनियम उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है, तो उसका वो निर्यात कर पाएगा, तो उसको भी इसका फायदा मिलेगा। तो ये दोनों देशों के लिए बड़ी अच्छी बात है जो हमने ये ऑपरेशनलाइजेशन किया है उस अग्रीमेंट का, जो कि बहुत पहले 10 साल से ऊपर हो गए जो हमने इसके बारे में अपना निर्णय लिया था, दोनों देशों ने निर्णय लिया था।
1: अम्बेसडर सज्जनार, अभी तो हमने ऊर्जा क्षेत्र की बात करी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहूंगी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया भारत सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस इवेंट को भी संबोधित किया था ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में लंबे समय तक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। आपके विचार में, आपकी समझ से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देश मिलकर आगे काम कर सकते हैं?
0: बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। देखिए, एक तो जो नई तकनीक है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रोबोटिक्स हो, ये वाले क्षेत्र हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरे हैं जिनमें हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमको ये ध्यान रखना है, जो अभी तक हालांकि दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध बड़े अच्छे हैं, परंतु अगर इकोनॉमी और ट्रेड को देखा जाए तो इतने ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। जैसे मैंने बताया, अभी तक हमारे यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, ऐसी टेक्सटाइल्स, ऐसी चीजें हम निर्यात करते हैं और वहां से हम आयात करते हैं कोयला और एलपीजी वगैरह, इस प्रकार के कमोडिटीज हम वहां से आयात करते हैं। परंतु अभी हमने कुछ साल पहले 2022 में हमने एक बायलैटरल अग्रीमेंट, इंटरिम जिसे मैं कहूंगा, ट्रेड अग्रीमेंट की थी, फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं थी, परंतु एक पहला कदम था उसकी तरफ, जिसको हम कहते हैं एक्टा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट, और उसका फायदा भी बहुत हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए, जो अगर भारत के जो निर्यात है पूरे विश्व में पिछले 4 साल में, अगर मैं कहूं जो करीब 40% ज्यादा बढ़ा है, तो मेरे विचार से ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो निर्यात है वो करीब 200% बढ़ा है, और वो इसी की बनिस्बत जो एक्टा से हमारा जो फायदा हुआ है, दोनों देशों को फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का भी जो निर्यात है भारत को काफी मात्रा में बढ़ा है, परंतु हमारे लिए ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि अब 1 जनवरी 2026 से 100% जो भारत के पदार्थ हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो सारे ड्यूटी फ्री हो गए हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सहूलियत बनी है। और इसमें हम देख रहे हैं, अब हमने एक्टा को रिप्लेस करके सीका की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जिसमें कि केवल ट्रेड इन गुड्स नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, ट्रेड इन सर्विसेज रहेगा, और ये सब क्षेत्र जब मिलेंगे तो हमारे दोनों देशों के बीच का सहयोग है वो बहुत बढ़ेगा। और इसी में अगर देखा जाए तो वहां की जो ऑस्ट्रेलिया सुपर, जो उनकी इन्वेस्टमेंट आर्म है, पेंशन फंड्स की इन्वेस्टमेंट आर्म है, उन्होंने आज उसी सीईओ फोरम में अनाउंस किया दीक्षा, जो ऑस्ट्रेलिया 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन US डॉलर, मतलब करीब 350 मिलियन US डॉलर, वो भारत में निवेश करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। इससे पहले अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में उन्होंने तो करीब 2.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियन US डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, और उनको ये विश्वास है जो भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसलिए मैं समझता हूं जो आह्वान था प्रधानमंत्री मोदी का, जो भी ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस कम्युनिटी था, वो बड़ी पॉजिटिवली रिसीव हुआ है।
1: आगे बढ़ने से पहले अम्बेसडर सज्जनार, आइए सुनते हैं कि आज साइन किए गए एमओयू के बारे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ज्वाइंट प्रेस मीट में क्या कहा।
2: With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region.
1: चलते चलते अम्बेसडर सज्जनार, आपसे बहुत ही संक्षेप में समझना चाहूंगी कि आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री, दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होने के नाते एक कॉमन विजन फॉर फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक की भी बात की, उस पे जोर दिया। तो जितने भी एमओयू, जितने भी आज समझौते हुए हैं, उसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप यानी कि एमएससीआर को भी देखा गया है। तो आप इसको हमारे श्रोताओं के लिए और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं।
0: अभी जो आपने प्रश्न किया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो मित्रता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सहयोग है, वो केवल द्विपक्षीय मामलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वो पूरे क्षेत्रीय, इस पूरे इंडो पैसिफिक में, जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे विश्व में अगर हम कहें, जो ये स्थायी होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, यहां पर भी हम देख रहे हैं जो बहुत अनिश्चितता बनकर आ रही है इस क्षेत्र की, जो डेमोक्रेसीज हैं, जो ये सभी डेमोक्रेसीज को मिलके ये निश्चित करना होगा जो ये क्षेत्र जो है ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी यहां पर बनी रहे, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर यहां पर जो काम होता है वो सब होता रहे। और इसीलिए हमने देखा है, जो आपने कहा, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस हो, उसमें ब्लू इकोनॉमी का कैसे फायदा लिया जाए।
1: जी एम्बेसडर सज्जनार, आने वाले दिनों में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पे अपनी नजर बनाए रखेंगे और उस पर चर्चा करते रहेंगे। इस पूरे विषय पे अपने विचार हमारे साथ साझा करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। सुर्खियों में
4: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया कि सुनने वालों को आसिफ अली का नमस्कार। दोस्तों, कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते, कुछ धुनें वजह के बगैर दिल को छू जाती हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सफ़र। तेरी याद की बारिश में भीगना अच्छा लगता है, तेरे नाम का इंतज़ार भी इबादत लगता है।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार दिनांक 10 जुलाई यानी कल सुबह 11:32 से 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहें सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 10 जुलाई यानी कल सुबह 11:32 से 12 बजे तक एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी इंस्पेक्टर सरिता सिंह और सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह, स्टेट साइबर सेल इंदौर। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, शुक्रवार दिनांक 10 जुलाई यानी कल सुबह 11:32 से 12 बजे तक विविध भारती चैनल इंदौर पर। तो आप भी फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां विशेषज्ञ इंस्पेक्टर सरिता सिंह और सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह, स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। तुम बिन जीना भी एक अजाब है, तेरे साथ जीना भी एक ख्वाब है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वादे मोहब्बत के अक्सर टूट जाते हैं, पर कुछ नगमे ऐसे हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते।

कुछ यादें ऐसी होती हैं जो धड़कन बन जाती हैं। सांस लो तो महक आए, चुप रहो तो गूंजे,

इस गीत के साथ ही आज का दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम खत्म करने की इजाज़त दीजिए आसिफ अली को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
4: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है।

0: US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar, and in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: Spotlight.
2: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, पेश है चित्रगीत। कन्यादान फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे चित्रगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम मन भवन सुनने वालों को आसिफ अली का नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है फिल्म पिया का घर से। आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं कंवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और शिवानी श्रीमाली। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सोरो और शाइना शर्मा। राजपुर से गीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। राजकुमार मिल इंदौर से अमृता रायकवार, महेंद्र, सरिता, नितिन, कृष्णवी, अहल्याबाई और इनके परिवार के सदस्य। आइए इन सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म पिया का घर का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

दुल्हन एक रात की, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल राजा मेहंदी अली खां के हैं। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर बिरग, जेतक बिरग और मीका बिरग। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरंगी से भागवत वर्मा।

जिंदगी और तूफान, इस फिल्म का गीत सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज़ में। बोल राम अवतार त्यागी के हैं, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश भेजी है धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूणत, दिलीप सिंह पंवार। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, श्वेता, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर। सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता चित्रा और निशा ने। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म जिंदगी और तूफान का गीत मुकेश और साथियों की आवाज़ में।

मैंने जज्बात के संग खेल के दौलत देखी, मैंने जज्बात के संग खेल के दौलत देखी, अपनी आंखों से मोहब्बत की तिजारत देखी, ऐसी दुनिया में मेरे वास्ते रखा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता, तेरा इरादा क्या है, एक हसरत।

ग्राम मोरटक्का माफी से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। पलसीगर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी, अमिता, जिम्मी, जियाना, जियांश मटाई। इंदौर से ही आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, प्रतीक, रोशनी और प्रांचल राय। चांदूर बिस्वा से नारायण खड़से, ललिता खड़से, स्वाति खड़से, परी खड़से, संजना, गणेश, कार्तिक खड़से।

धाड़ी नंदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे, इन सब की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म अमानत का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल साहिद लुधियानवी के हैं, धुन बनाई है रवि ने।

जिंदगी और ख्वाब, इस फिल्म का गीत सुनिए मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। बोल प्रदीप के हैं, धुन बनाई है दत्ताराम ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल।

कल शीला और गायत्री धनजय, मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा और नीतू वेद, गुमाश्ता नगर इंदौर से अनिल कवचाले, नेहा फण से सीमा, सबिया फजल, पूजा नेनावा, सुषमा और स्मिता, मूसाखेड़ी इंदौर से रवि डामोर, बबीता डामोर, संदीप, दुर्गा, देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, सुभाष गोड़िया, नवीन वर्मा, मीनू वर्मा, जमील खान, असलम शेख, फुरकान, राजेश अग्रवाल, शांति महाजन और कैलाश महाजन, हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे, मैसोल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, इशरत अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसरम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, शाहिन नाज, नूरी नाज, बच्चू और शीना शेख, औराई से फैसल शेख, नुसरत जहां नाज, समस्तीपुर से शहनवाज परवेज और मुसर्रत जहां नाज। इन सब की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म जिंदगी और ख्वाब का गीत मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की।

शोएब, मुस्तफा, रऊफ और शाहिद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानूराम कांसोटिया, नंद किशोर कांसोटिया और दीपक कांसोटिया। हिंगोली से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी सुरभि, मंजूषा और गौतम इंगोले। इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

आशिक फिल्म का गीत सुनिए मुकेश की आवाज़ में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जी जय किशन। इस गीत को सुनना चाहते हैं महेशवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय किरोड़कर। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अकरम और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और महराज अंसारी। सोमानी नगर इंदौर से पी आर नामदेव, राजश्री, रौनक, रोशनी, सुमिति और धीरज। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाहजहाँपुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और समस्त राजावत परिवार। इन सब की पसंद पर आइए सुनते हैं आशिक फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में।

सन्यासी फिल्म का गीत सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहते हैं उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाक्तरिया, भोला वाक्तरिया, प्रवीण, रियांश और प्रतीक वाक्तरिया। जलगांव सोमनाथ जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश, कार्तिक, अश्विन, वैष्णवी जगदाले, हरसुल सावंगी, वैभव गौरव लोखंडे, मेघराज युवराज कोलते, रुद्र कोलकर और उनके परिवार के सदस्य।

नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर और ऋषि का, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, अब्दुल रहमान डाबर, अब्दुल कादर डाबर, मोहम्मद हमजा डाबर और अब्दुल रशीद खत्री, पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वड़ोदे, बाबा साहब वड़ोदे, मीनाक्षी चर्वे और चंद्र प्रभा वड़ोदे।

0: दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुँचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए, भोली जनता भोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा,

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनजाना फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज सवासेरे, बीकनगांव से संतोष सातले, सारिका, रोहित, शुभम, शैलेंद्र, कंचन और चंदन सातले, बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल, लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, दस्तगीर शेख, फिजान बी, शाकिर इस्लाम बी, बाबा करिश्मा शेख, सानिया, शकील पठान, बिस्मिल्ला बी शेख, गदर शेख और नीलोफर शेख। आड़ा बाजार इंदौर से प्रतिभा पांजरे, नेहा, जिया, बल्लू, मनीष शर्मा, राशि, आशीष जाधव और दिनेश पांजरे।

0: बोलो बोलो।
1: लगन
0: नहीं,
1: किरण
0: नहीं,
1: पवन
0: नहीं,
1: मिट्टी
0: मिट्टी नहीं, चिट्ठी।
1: वो कौन है, वो कौन है, सबको समझाता है।
2: इस गीत के साथ ही आज का मन भवन कार्यक्रम खत्म करने की इजाजत दीजिए। आसिफ अली को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत है पंडित वसंतराव देशपांडे का गाया राग जय जयवंती। हारमोनियम पर हैं मधुकर।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित वसंत राव देशपांडे का गाया राग जय जयवंती। सारंगी पे संगत कर रहे थे मधुकर खाडिलकर, हारमोनियम पर थे अप्पा जलगांवकर। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 11 बजने को हैं समाचार, कुछ ही पलों में हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग

0: पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India.